शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Welcome back, Radio Masti 24/7 Live par 8 baje ke us paar pahunch chuke hain. Good morning. Yes, Masti Ka Mantra chal raha hai Andhra ke saath and why am I sounding so happy? Halanki khabar utni zyada kuch happy nahi hai, at least for Ranbir Singh. So well, bhai, jaisa ki thodi der pehle main aapko batane wali thi ki ye raat mein bhar mein kafi sara kuch ho gaya. Kal hi ka wo din tha jab maine aapko bataya tha that jo hai ye aisa kuch mahol bana hua hai aur ye wo wala case hai, wo kafi time se chal raha hai aur mujhe aisa lag raha tha personally that ye case kafi kuch settle ho chuka hai. रणवीर सिंह जो है डॉन 3 से एग्जिट मारने के बाद उन्होंने कंपनसेशन देने को वो तैयार हो गए हैं एंड मामला सारा सेटल हो गया है. बट सडनली यू नो लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ ऐसा कहता है कि भाई ये जो फ्वाइस है FWICE, द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, तो भाई उन्होंने कल ये अनाउंस किया है, कल एकदम ताजा कि मोर देन 4 लाख मेंबर्स वुड नॉट वर्क विद रणवीर सिंह बिकॉज ऑफ हिज लास्ट मिनट एग्जिट फ्रॉम फरहान अख्तर की डॉन 3 व्हिच हैड बीन इन द मेकिंग फॉर 3 इयर्स. सो भाई क्विक रिकैप, फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिद्धवानी जो है उन्होंने फाइल किया था कंप्लेन अगेंस्ट रणवीर सिंह बिफोर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन के डायरेक्टर्स एसोसिएशन विच इज कॉल्ड इफ्ता नाउ विच देन रेफर्ड द मैटर टू फाइस, जो अभी फिलहाल सामने कह रहे हैं कि भाई आप इसमें यू नो स्टेप इन करिए. द प्रोड्यूसर्स क्लेम दैट मोर देन 45 crores जो है had already been spent in pre-production phase. Now we all remember there was a teaser जो है जो release हुआ था जिसके लिए भी रणवीर सिंह ने काफी backlash face किया था because everybody was like यार शाहरुख खान के जूतों में कैसे step in कर सकता है भाई रणवीर सिंह and all those things. But then well ये जो अशोक पंडित जी हैं जो कि chief advisor है FWICE के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा दैट रणवीर सिंह जो है ही withdrew from the film 3 weeks before the shooting was about to begin and he walked out of Dawn 3 citing that script changes जो है वो उनको उतने समझ में नहीं आए. This is now one part of it where the fans have also of course stepped in. It is all in social media out there. ठीक है, अब fans ये कह रहे हैं कि भाई दो तीन साल पहले जो है वो डॉन 3 के लिए तुमने बोला था बट डॉन 3 बढ़ी नहीं, उसका प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था. उसके बीच में धुरंधर आई, उसने सेकेंड पार्ट भी रिलीज कर दिया एंड देर वॉज नथिंग एंड नो न्यूज ऑफ हाउ फार दिस डॉन 3 इज गोइंग. बट देन या कॉन्ट्रोवर्सी उसके अराउंड जो है काफी सारी कुछ आ गई. तो ये हो गया पूरा का पूरा मुद्दा. तो हो गए हैं रणवीर सिंह फिलहाल के लिए बैन अंटिल एंड अनलेस ही अग्रीज टू पे द कॉम्पनसेशन ऑफ 45 crores टू द प्रोडक्शन हाउस विच बिलोंग्स टू फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी. नाउ रणवीर सिंह ने खुद तो नहीं बोला बट उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बोला है. क्या बोला है? काफी जो है लंबा हो गया है मैटर. मैं आपको बताती हूँ वॉट ही हैज रिस्पॉन्डेड बट इन जस्ट अ शॉर्ट वाइल. बट डेफिनेटली रणवीर सिंह के दिल में ये गाना जरूर बज रहा होगा कि मैं तो अभी लुट गया अच्छा खासा. ही वाज राइडिंग द सक्सेस ऑफ धुरंधर बट या सम थिंग्स यू कैन नॉट अवॉइड. अ लॉट ऑफ फैंस आर आल्सो सेइंग दिस कि भाई क्योंकि नाउ लाइक लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि ये बंदा सही कर रहा है. या दैट आल्सो कैन बी सेड मेबी. या लेट्स गो लिसन टू द सॉन्ग्स एंड देन आई विल कम बैक एंड टेल यू कि रणवीर सिंह की तरफ से क्या जवाब आया है. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning.
7: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
8: वेलकम बैक, 8:00 हो चुके हैं, 18 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती का मंत्रा चल रहा है, ऑफ कोर्स अंतरा के साथ। एंड थोड़ी देर पहले एक हुई थी शुरू कहानी, एंड आई वाज टेलिंग यू दैट क्या हुआ, रात रात भर में जो है रणवीर सिंह हो गए हैं बैन बाय द फिल्म बॉडी, और अराउंड 4 लाख प्रोड्यूसर्स जो है दे हैव बीन टोल्ड कि भाई इनके साथ अभी तो काम नहीं ही करना है जब तक कि ये हमारे जो है जो भी इनको कहा जा रहा है और जब तक कॉम्पनसेशन पे करने को कहा जा रहा है वो नहीं कर देते। सो वेल, उस पे रणवीर सिंह ने खुद नहीं बट उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो है उन्होंने बिल्कुल रिलीज किया है ये स्टेटमेंट दैट रणवीर सिंह खुद जो है होल्ड्स द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द फिल्म फ्रेटर्निटी एंड फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद द डॉन फ्रेंचाइजी। थ्रू आउट जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं सराउंडिंग डॉन 3, ही हैज कॉन्शियसली चोजन टू मेंटेन साइलेंस, बिलीविंग दैट प्रोफेशनल डिस्कशंस एंड पर्सनल इक्वेशंस आर बेस्ट हैंडल्ड विद डिग्निटी, मैच्योरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वेल, काफी सारे नैरेटिव्स एंड स्पेकुलेशंस जो है सरफेस कर रहे हैं ओवर टाइम। रणवीर सिंह जो है हैज नेवर कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड इस बारे में पब्लिकली या फिर कॉन्ट्रीब्यूट करे इसमें किसी भी तरह से। हिज फोकस रिमेन्स फर्मली ऑन हिज वर्क एंड कमिटमेंट्स अहेड। एंड ये कहकर उन्होंने कहा है कि अभी भी वो कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। इनफैक्ट इट्स ट्रू एज वेल, बिकॉज जब इससे पहले भी जितनी भी बातें चल रही थी डॉन 3 के एग्जिट को लेकर, देयर वाज नथिंग फ्रॉम रणवीर सिंह के साइड जो उन्होंने पब्लिकली इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो इसके बारे में। नाउ Nobody knows what the real story is. ये हमेशा जब भी हम बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हैं, we really don't know what is going behind it. But ultimately क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाली सारी चीजें एंड अपडेट्स वो definitely सोशल मीडिया पे हमें जांच पड़ताल करते हुए पता लग ही जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इसी के साथ साथ रणवीर सिंह हैज ऑल्सो गॉट दिस कैमियो विद शाहरुख खान की मूवी किंग, जिसमें ऑलरेडी देर इज अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग एंसेंबल स्टार कास्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ सुरेंदर, विच ऑन विच आई थिंक ही इज गोइंग टू राइड फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम। ही इज हेयर टू स्टे, ही इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी कह लो या फिर बुरा मान जाएगा या फिर यू नो दब जाएगा। पर्सनालिटी नहीं है हमारे, ही इज द रंगीला रणवीर सिंह। या आई थिंक ही विल फाइट टिल द एंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। लागे लिए तो लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड लेट मी कम बैक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सुनते रहिए मस्ती का मंत्र विद मी अंतरा।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste bhai aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: 40% off, 40% joy Alukas,
5: 40% off, oh my god, let's go.
6: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
7: That is right. Let's talk about this. 8:31 by the studio clock. Radio Masti 24/7 live on Tribe ke saath yahan par chal raha hai Masti ka mantra. Good morning. Subah subah ekdam jewelry ki baat karte the. You know what happens that whenever I take my mom to a jewelry shop, ek to pehle unko pehle se batana bada mushkil ho jata hai because she is still that my middle class wali meri mummy. Kuch bhi aisa jewelry ya khareedne ki baat karo ki nahi mujhe kuch nahi chahiye. Mujhe mere paas to hai jo hai wo hi bahut acha hai and all those things. And I'm like, नहीं अच्छा चलो ऐसे ही चलते हैं, देख के विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे. And that is how I take her to the jewelry shop and make her buy the jewelry. And then एक बार when we enter that shop, then you see भाई जो बदलते हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. मैं कुछ पिक करने लगती हूँ, फिर उनको कुछ पसंद आने लगता है, फिर ऐसा करके अल्टीमेटली हो जाता है. बट दैट इज हाउ इट इज राइट. सो वेल, जया लुकास जैसे कि अभी आप सुन ही रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया है अपना बिगेस्ट ज्वेलरी सेल एंड इट इज द ऑफर इज ह्यूज. ओके, हाउ कैन यू नॉट नो अबाउट इट? फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, पोल की हो या प्रेशियस ज्वेलरी हो. 14 जून तक ये सेल चल रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट. ओके, इमेजिन आप यू नो आप भी ऐसे ही वॉक इन करें जॉय लुकास में कि बस देखने आए हैं एंड 20 मिनट के बाद या यू विल नो व्हाट हैपेंड. बट दिस दीज थिंग्स अगर प्री प्लान की जाए तो कितना सही है ना. वैसे भी त्योहार के सीजन में आने से पहले ही अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते और लेके रख ले तो सेटल हो जाता है मामला, राइट? एंड ज्वेलरी शॉपिंग इज नेवर शॉपिंग, एक इमोशन है, एक यू नो बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस तरह से आप. सो द टाइम दिस टाइम द टाइमिंग इज परफेक्ट. चाहे किसी को गिफ्ट करना हो, चाहे खुद के लिए लेना हो फॉर द एनिवर्सरी, अगर आप भूल गए हैं तो उसके गिफ्टिंग के लिए या सिंपली आई डिजर्व दिस बोल के चले जाइए जॉय लुकास वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर्स में. सो वेल, इसके साथ साथ इजी पेमेंट प्लान्स भी अवेलेबल है वहां पे. सो एवरीथिंग इज द बेस्ट because they are the best jeweler around, right? But remember, ye jo sale chal raha hai, ye jo offer hai 40% wala making charges, wait, that is only valid till 14th June. So, well, head to Joy Lukas today, 312-420, kisi bhi outlet mein jayen, but zarur jayen. I love the variety they have. I have always been really, really, kafi mujhe achha lagta hai unka. So, well, ye jo hai, टाइम टू स्पार्कल विथ हैप्पीनेस का टाइम है ना. और फिलहाल वो स्पार्कल आपको ये गाना सुन के भी आ सकता है क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं सोना सोना बाबा सोना सोना. नहीं, वो नहीं, ये तो सोना कितना सोना है, बट कितना सोना कितना हो सकता है. एनीवेज, मैं ये अपने सोल्यूशन को ढूंढती हूँ, आप गाना सुन के आओ.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: तुम मेरा भाई गोविंदा के गाने यू कैन नॉट बीट इट भाई, कभी भी चला लो, इट विल मेक यू ग्रूव। 8:39 हो चुके हैं, स्टूडियो क्लॉक में आइए ग्रूव करते हुए। बताती हूँ आपको ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर स्टीवंस रोड, व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर योचोखांग रोड, एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन TPE टुवर्ड्स PIE आफ्टर पोंगोल रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। Well, ये था इस घंटे का अपडेट। कमिंग अप परिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी रब, काफी ढिनचैक सा गाना, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल बी राइट बैक आफ्टर दैट।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: एक मिनट जुनैद भाई, क्या बोल रहे हो भाई? ओके, रेडियो बस्ती 24/7 लाइव मंत्र आपके साथ यहाँ पर चल रहा है, बस्ती का मंत्र ऑफ कोर्स. एंड यस, गुड मॉर्निंग. इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग. एंड एक के बाद एक ऐसी ऐसी खबरें आ रही है भाई. जुनैद, अब आप कहोगे कि कौन है जुनैद भाई? आमिर खान का बेटा जुनैद. आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री की बातें कुछ ऐसी चल रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है घर घर के आसपास के लोग, अरे उसका बेटा जुनैद, नहीं पता, याद कर. अरे अभी हाल ही में जुनैद की फिल्म आई है ना, वो एक दिन करके, आमिर खान कई सारी जगह पे प्रमोट करते हुए मेरी नजर आए थे. तो हाल ही में जुनैद से पूछा गया कि वेदर ही डिस्कसेस फिल्म के अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने पापा आमिर खान के साथ, एंड अपेरेंटली ही सेड नो बिकॉज आई मेड दैट मिस्टेक विद एक दिन. है क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा, सो ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द स्टोरी बिहाइंड इट, दैट रिवीलिंग जो फिल्म मेकर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा है, हैड फर्स्ट अप्रोच्ड हिम अबाउट अक्वायरिंग द राइट्स टू द थाई फिल्म वन डे. सो नाउ ये एक थाई फिल्म है, वन डे, उसी का मतलब काफी कुछ वर्जन दिस मूवी इज एक दिन, इवन बिफोर शूटिंग यू नो अदर फिल्म्स, एंड हैड एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मेक द फिल्म विद जुनैद. एट दैट पॉइंट स्क्रिप्ट जो है फिर उस टाइम पे वर्क ऑन की जा रही थी. इट वॉज लेटर वेन द टू वर बिजी फिल्मिंग सम अदर मूवी कॉल्ड महाराज, सिद्धार्थ सैट डाउन विद जुनैद एंड नरेटेड द फुल स्क्रिप्ट ऑफ एक दिन टू हिम, एंड जुनैद इंस्टेंटली फेल इन लव विद इट. इसमें अगर पापा आमिर खान अगर बोलते बीच में तो फिर या वो ज्यादा चीजें मटेरियलाइज नहीं होती हैं. ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड बाप बेटा काइंड ऑफ थिंग, कि नहीं नहीं नहीं, वहां से बहुत सारा ज्ञान आता. वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस. ओके, वो द काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लाइफ आमिर खान हैज हैड टिल नाउ, आई थिंक. या बट आमिर खान लेटर जब एक दिन इतनी चली नहीं तो उन्होंने काफी वो जो है अपनी मायूसी जाहिर की मीडिया के सामने की मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी. शर्वरी को तो उन्होंने बोल ही दिया था कि साई पल्लवी जो इस मूवी में जुनैद के साथ नजर आई थी, शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस इंडस्ट्री हैज एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. आमिर खान जी खुद सबैटिकल पे है, प्रिपेयरिंग फॉर द महाभारत मूवी विच वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू रिलीज, बट देन या आई थिंक वक्त वक्त की बात है. अब इससे ज्यादा तो कहना हम में से किसी का भी नहीं बनता है. Coming up next is a brand new track, हाल ही में इस हफ्ते और पिछले हफ्ते हमारे टॉप चार्ट्स में रेणुका ने भी इंट्रोड्यूस कराया था. इट्स अ क्वाइट नाइस एंड वाइबी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा. कोई मुझसे कल ही पूछ रहा था कि बड़ा क्यूट सा गाना है, कौन सी मूवी का है. यप, हियर यू गो, इट्स कॉल्ड मस्कारा.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या जी?
6: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाजी, क्या बात जी।
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: आरती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: वो जिद कैसी होती है ना कि कभी कभी आपको कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे कह दिया यार, अब तो मैं करके बताऊंगा ही बताऊंगा। वेल, किसकी जिद थी और किसकी जिद ने तोड़ा रिकॉर्ड, लेट मी टेल यू। जस्ट ऑफ कोर्स जब मिलेंगे 9 बजे के उस पर। लेट अस रैप अप दिस आवर विद सयारा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप सुन रहे मस्ती का मंत्रा विद अंतरा। गुड मॉर्निंग।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूज से आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: आइए वेलकम, 9 बजे के उस पार आपका स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड यस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन की बात होने वाली है यहां पर, तो तैयार हो जाइए बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट बट इट इज काइंड ऑफ एवरीवेयर। Somebody हैज ब्रोकन मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड। यस, इंडिया जस्ट क्रिएटेड स्प्रिंटिंग का हिस्ट्री एंड इट्स अ काइंड ऑफ न्यूज। अभी भी मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ ना, मेरे को तो गूजबम्स ही आ जाते हैं। सो दिस एथलीट नेम गुरिंदवीर सिंह जो है, हैज ऑफिशियली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन एवर इन द मेंस 100 मीटर का स्प्रिंट, ब्रेकिंग मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड, क्लॉकिंग एन अनबिलीवेबल 10.09 सेकंड्स। फेडरेशन कप रांची में ये हाल ही में हुआ। नाउ कई सारे लोग कॉमेंट्स वगैरह में 0.1 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है इन स्प्रिंटिंग, दैट लाइक 0.1 सेकंड इज एवरीथिंग। बिकॉज गुरिंदवीर सिंह जो है इज नाउ द फर्स्ट इंडियन एवर टू रन 100 मीटर इन अंडर 10.10 सेकंड। एंड वॉट मेक्स द स्टोरी इवन मोर इंस्पायरिंग इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो ये जब छोटे थे ही वुड पॉलिश अपने पापा के जो है ओल्ड मेडल्स एंड ट्रॉफीज ड्यूरिंग दिवाली क्लीनिंग, एंड समवेयर देयर दिस ड्रीम ऑफ हिम बिकमिंग एन एथलीट इट स्टार्टेड। ही इज फ्रॉम पंजाब, ही ऑल्सो सर्व्स एज अ पेरी ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, एंड आज की डेट में पूरा का पूरा कंट्री जो है इंडिया इज सेलिब्रेटिंग हिम एज द इंडियाज फास्टेस्ट man. In fact, I was watching one of his interviews where he was saying something like this, ऐसा नहीं है कि आसानी से सारी चीजें हो जाती है, हमेशा लोग कोई ना कोई आपके आसपास होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ना हो पाएगा तेरे से।
2: वो बोलते थे कि 100 में कोई फ्यूचर नहीं है, इंडियन 100 मीटर नहीं भाग सकते, 400 चूज कर लो, 400 में सब भागते हैं, इंडियंस के जीन्स नहीं है स्प्रिंटिंग के लिए।
1: That is right. He was being told that 400 भाग लो, 100 मीटर्स में तो इंडियंस का जीन्स ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हैं। And here he is proving every single person on just do what you know what you got to do. Just do it. That's all. लोग तो बोलने के लिए बैठे हुए कुछ भी बोलेंगे। Kudos to him, man. So good, so good. Good morning.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे हंसरा।
5: हाँ जी भाई, से पहले सीजन चला जाए कर लो अपने आम ऑर्डर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मंत्र आपके साथ 9 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट। गुड मॉर्निंग। मस्ती का मंत्र यहाँ पर चल रहा है एंड जी जी मार के आम होगी, मैं तो क्या ही बात करूँ। तारीफों के पुल और कितने बांधू कि आप फाइनली वहां से आम ऑर्डर कर लो। और आम ऑर्डर करके आई थिंक सीजन के ना सीजनल फ्रूट्स वैसे भी इट इज वेरी वेरी गुड टू हैव हेल्थ वाइज भी। कहा ही जाता है कि जिस सीजन में जो आया करे तो वही खाना चाहिए। सो वेल, अगर आपने GGMartOnline.com से जो है आम जो कि उनके ऑर्गेनिक आम है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और बिल्कुल भारत से उनके खुद के खेतों से ये सारे आम आ रहे हैं और उसका अगर लुत्फ आपने नहीं उठाया तो फिर आप काफी कुछ मिस आउट कर रहे हो। मतलब When एक आम जैसा एक फ्रूट आप जब यहाँ पे सिंगापुर में बैठ के खाओ, उसको रिलिश करो और आपको घर की याद आ जाए तो कुछ तो बात होगी ना उस आम में। ये मैं नहीं, ये योगी जी बोल रहे हैं।
6: Hi, myself Yogesh. So I'm staying in Singapore for almost 6+ years. So GGMart online mangoes taste is authentic. The quality of mangoes is a premium. Yeah, so we tried Alfonso and then we tried also Devgad Alfonso, Ratnagiri Alfonso, both variety we tried. Taste was absolutely amazing, sweet, juicy and rich in aroma. Actually, truly reminded me a summer of back to India. And it's really, really authentic mangoes and very nice mangoes.
5: See, I told you. So, बस अगर आपको भी ऐसे ही टेलीपोर्ट होना है इंडिया और आम खाते हुए वो भी, I think ये कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है। सो GGMartOnline.com जाए और बिल्कुल पहले तो अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आम ऑर्डर करें आम के साथ। आप बाकी का उनका पूरा वेबसाइट भी बिल्कुल चेकआउट करें जहां पर यू विल गेट ऑल योर ग्रोसरी आइटम्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स एंड उनका जो है नट्स जो है उनके काफी अच्छे हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली मुझे कई सारी जगहों पर नहीं मिली है एंड आई हैव फाउंड इट there हमारे GGMartOnline.com पे। सो या और डोर स्टेप पे भाई कोई डिलीवर करके जाता है तो जिंदगी ऐसे ही आसान सी लगने लगती है। सो आप भी बिल्कुल इस बात का लुत्फ उठाएं और स्क्रीनशॉट अगर रजिस्टर करके भेज देंगे तो प्रोमो कोड का भी लुत्फ आप बिल्कुल उठा सकते हैं। बट फॉर दैट यस, जस्ट लॉग ऑन टू GGMartOnline.com।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि सपना सच हुआ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अंतरा आपके साथ मस्ती का अंतरा चल रहा है. 9:30 बज चुके हैं यहाँ पर स्टूडियो क्लॉक में. और पता नहीं एक यूजुअली ये हरकतें जो है ना फ्राइडे को होती है एंड अदर वे राउंड होती है कि मैं बस निकल रही होती हूँ स्टूडियो से और वहीं पे जब रेणुका का शाम वाला शो होने वाला होता है शी इज लाइक जा रही है क्या करेगी जाके रुक जाना. तो मेरे को अभी दिख गई है. तो मैंने कहा कि आप आके जा किधर रहे हो, यहाँ पे बैठो कुछ देर हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग.
1: ये कैसा ये जो आवाज आ रही है ना, ये जबरदस्ती वाली आवाज आ रही है कि नहीं नहीं जाने दे मुझे.
2: इसलिए मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है. मेरे पास यहाँ बैठने का टाइम नहीं है. मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि तुम्हारा शो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है. अंतरा जी,
1: ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, मतलब किसी भी रेडियो के बॉस का तो पता करना अटेंडेंस कितना ज्यादा इजी है. रेडियो ऑन करो, अगर बंदा बोल रहा है मतलब हाजिरी यहाँ पे लगी हुई है. इट्स वेरी वेरी इजी.
2: बट मुझे आज तुमसे इसलिए बात करनी थी अंतरा जी कि भाई ये सुबह सुबह क्यों तुम रणवीर सिंह के पीछे पड़ गई हो, ये बताओ. अब वो जो गाना है ना, केड़े पासे जाइए सजना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है. बिकॉज सीरियसली नाउ दैट्स द क्वेश्चन ही इज एक्चुअली गोइंग टू आस्क, कहाँ जाऊं भाई.
1: लोग पूरा फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक उसके पीछे पिल के पड़ जाना, ऐसे पीछे उसके पड़ी हुई है कि अब वो कह रहे कि हम तो तुझे बॉयकॉट कर देंगे कि तूने छोड़ दिया था. वो अब क्या करे, कर ही सकते हैं. वो तो एवी लुटा ही जा रहा है वो बेचारा. पुअर थिंग, आई फील बैड फॉर हिम.
2: मगर मुझे ये भी लगता है कि देखो सक्सेस के पीछे, ओके, ये फ्राइडे का हो गया, सक्सेस के पीछे दोस्त बहुत सारे छूट जाते हैं. क्यों अंदर जी, बात सही है.
1: That is true. आप ये बताइए कि आप जो है काफी, आप, मैंने कहा था ना पिछले भी बार बात करी थी कि हाल ही में आपने काफी हिंदी बोली हुई है, कुछ बताएं उस पे, थोड़ी सी टिप्पणी डाले. या फिर एक काम करते हैं, अब आप जब आई गए हो तो थोड़ा सा बैठिए, आराम करिए, हम थोड़े गाने वाने प्ले करते हैं, फिर आके आपसे जरा पूछते हैं, पता करें कुछ तो खास किया है आपने हाल ही में.
2: मैं यही हूँ प्रस्थान करने से पहले आपसे वार्तालाप करके तभी निकलूंगी यहाँ से. धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए.
1: Guys, stay tuned. Then, अभी मैं रेणुका को जाने नहीं दे रही हूँ. Let me speak to her, क्योंकि there's something really, really amazing which she has done, and we all are very, very proud of her for that. Yeah, तो stay tuned जानने के लिए, गाने सुन के वापस आइए.

0: कैसे कटेगा कैसे कटेगा, पल पल करते हुए सुबह 7 से अब बज चुके हैं 9:37 बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, बट अंतरा अकेली नहीं है, रेणुका यहाँ से गुजर रही थी, मैंने उनको धर दबोचा। गुड मॉर्निंग रेणुका। मैं नहीं बोलूंगी, बोल दो रेणुका, इट्स ओके, आप बोल सकते हो, मेरा शो है तो क्या हुआ, आप बिल्कुल बोल सकते हो।
1: अच्छा, धर दबोचा, मैं वहीं पर अटक गई एक्चुअली, आई कुडंट गो बियॉन्ड दैट, मेरी तो बोलती बंद हो गई।
0: तो मैंने कहा हिंदी की बात होने वाली है कि मुझे भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है ये वार्तालाप उस दिशा में बढ़ती हुई जाए। वाह वाह,
1: यू नीड सम मोर प्रैक्टिस, इतना तो
0: आई नो।
1: लेकिन हाँ, ये वाली वार्तालाप जो आज शाम को सभी देखने वाले हैं 6:30 बजे हमारे मस्ती एवीआई पर, आई मीन इट इज वन ऑफ दोज विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। आप सोचिए वीकेंड वाली कविता, जी हाँ, विनोद दुबे जी जो बड़े बड़े धुरंधरों से मिलते हैं, यू नो, एंड दीज आर हिंदी के साहित्यकार और हिंदी के सारे कवि और दुनिया भर के ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी को एक अलग लेवल पे यू नो पहुंचाया है। तो उन्होंने जब कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो भी सॉलिड हिंदी में, तो मैं तो क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल हो रहा, मुझे शब्द नहीं मिल रहा, वो
0: सक पका गई मैं तो।
1: बट बहुत खुशी हुई मुझे, गद गद हो गई मैं खुशी से, मैं क्या बताऊं। तो या दैट इज द थिंग, लेकिन सीरियसली इट वॉज अ गुड कॉन्वर्सेशन और मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुने। ऑफकोर्स इतना डेप्थ में नहीं जा पाए हम बिकॉज टाइम कम था, उनका 30 मिनट्स का होता है, हम ऑलरेडी 50 मिनट्स कर चुके थे बात और फिर भी हमारी कहानी बहुत बची हुई थी। बट हाँ, शाम को मौका मिलेगा सबको वो देखने का, सो आई एम रियली एक्साइटेड।
0: इनफैक्ट जब मेरी रेणुका से बात हुई थी, मैंने कहा रेणुका इतनी सारी, मतलब हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं तो कितना सारा उसमें इंग्लिश यूजुअली ऐड हो जाता है ना चाहते हुए भी, एंड आई वाज क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज यू नो द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मैंने कहा कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा तो नोट्स ले लेती हूँ अभी से। ऐसे ऐसे किया जाता है स्मार्टली।
1: बट मैंने एक्चुअली कुछ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है जो मैंने सोचा था कि मुझे आते नहीं है, एंड मैं बाद में देख रही थी तो मैंने कहा यार ये मुझे आता था, मतलब मेरी हिंदी की टीचर की आत्मा में हर बार, आई नो वो आज के दिन में मुझे आशीर्वाद दे रही होगी कि बेटा तू स्कूल में ना सही, लेकिन एटलीस्ट अब तूने हिंदी के लिए कुछ किया है जिंदगी में, तो कमाल है, सुनना यार सब।
0: या डेफिनेटली शाम को 6:30 बजे जो है मस्ती एपीआई पर यू कैन कैच दिस कॉन्वर्सेशन, हिंदी में कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप जो है जो रेणुका ने की है विनोद जी के साथ, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड एक हमारा जर्नी पे भी एक स्नीक पीक आपको उसमें मिल जाएगा, विच इज क्वाइट नाइस। भाई आपसे तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैंने जो आपका हाथ पकड़ के आपको बिठाया, आप बैठ गए और आपने हमारा साथ दिया इस शो पे जाते जाते। थोड़ी देर और बैठना आप पसंद करेंगी?
1: नहीं, मैं यहाँ से जाना पसंद करूंगी। और लेकिन फिलहाल के लिए मैं देखने आऊंगी ना वापस कि तुम कितने बजे निकलती हो, यू नो, वन ऑफ दोज।
0: ओके, थैंक्स रेणुका, हैव अ गुड डे।
1: थैंक यू एंड एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड मतलब मिड वीक छुट्टी जो है कल।
0: हाँ, मिड वीक छुट्टी तो वीकेंड ही लगेगी। हाँ, आप ठीक ही बोल रहे हो।
1: थैंक यू, बाय
0: बाय।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Shahi Maharani for the special treat.
5: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
6: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
5: Thank you.
4: We love you.
0: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 623-58840. Terms and conditions apply.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: चलो भाई, आज की तुम्हारी ऑफिशियल अटेंडेंस लग गई यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। भाई अंतरा थी सुबह 7 बजे से, अब अंतरा के जाने का टाइम हो रहा है। एंड अभी एक घंटे का आपका म्यूजिक कैफे वाला ब्रेक एंड ब्रेक के उस पर ऑफकोर्स हमारी आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। हम भी हाजिर हो जाएंगे शाम को वापस से, बिकॉज वी हैव आवर शो डियर मस्ती दिल से। यस, एक नए एपिसोड के साथ काफी सारी चिट्ठियों को पढ़ते हुए उनके बारे में अपने POVs बिल्कुल जाहिर करते हुए, दैट इज दैट। एंड ऑल्सो अभी थोड़ी देर पहले जो रेणुका यहाँ पे बता के गई मस्ती AVI पर, उनका एक इंटरव्यू जो है वो काफी काफी अच्छा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट एज वेल। आई होप यू हैड फन, आई होप यू हैड अ गुड टाइम। एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। या लेट्स ऑल ऑफ अस Have a really, really good day. Good, productive day. Productive day कैसे होगा? कल छुट्टी है। हाँ तो फिर वही फ्राइडे वाली फील आ गई, जैसे योगेश कह रहे थे। ऑलमोस्ट वही वही या मिड वीक छुट्टी तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, बट छुट्टी सबकी नहीं होती है लक्ष्मण, सबकी नहीं होती है। हम आपको यहीं पे मिलेंगे काम करते हुए, जिस दिन छुट्टी, हमारा काम तो वैसे भी बढ़ ही जाता है। जिम्मेदारी देखिए, इतना एंटरटेनमेंट इज अ सीरियस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
0: क्या जी?
1: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो और grocery at your doorstep.
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.
2: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
2: We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: करण अर्जुन आएंगे
0: ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: शोर सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: यार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना सच में बड़े हो चुके हैं, मतलब बड़े इन द सेंस कि अब हमारा जो कॉमन सेंस है ना वो डेवलप हो चुका है। सो हेलो हाय, मैं आरजे फॉर मस्ती मॉर्निंग शिप्रा आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि पहले लगता था जल्दी वक्त बीते, हम भी बड़े लोगों की तरह ऑफिस वगैरह जाएं, और अब ये जो सिनेरियो चल रहा है ना कुछ साल से, ये देखा नहीं जा रहा है। अब MRT में सुबह सुबह ना मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट को बहुत ज्यादा घूर रही थी। मतलब उस बच्चे ने सच में मन में सोचा होगा कि ये मुझे क्यों घूर रही है, लेकिन घूरने का रीजन बहुत ही सिंपल सा था कि उसे देखकर मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी कि यार ये भी क्या दिन थे यार। मतलब कोई चिंता नहीं थी, बस बैग उठाओ और निकल जाओ, फीस जा रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब ओहो हो हो माथे पर शिकन दिखाई देने लगी है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, लाइफ के हर फेज को कैसे इंजॉय किया जाए इसका एक ही तरीका है, हम चाहे जितने बड़े हो जाए दिल को थोड़ा बच्चा रखना पड़ेगा। तभी तो वो वाला गाना कितना चलता है, दिल तो बच्चा है जी, राइट। जैसे ही आप इस स्विच पर, इस मोड पर आ जाएंगे तब लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएगी। मस्ती मॉर्निंग शो पर आरजे नूपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग why to fear when जीजी मार्ट is there?
4: क्या जी?
5: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
4: वाजी क्या बात जी,
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
6: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच। छह यार जी।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: कुछ लोग ना बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है वक्त रहते डेवलप नहीं होता, बाय बर्थ होता है। मतलब अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, एट्थ में है, कॉलेज टाइम में है, तो वो ना टॉपर्स की कैटेगरी में रहते हैं। मतलब सीधी भाषा में बोलूं, उनकी नस्ल में ना पढ़ाई गिरी होती है, ज्ञान होता है, टॉपर्स वाला जो एक एटीट्यूड होता है। सो हेलो हाय, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, ये जो एक्टर्स की लिस्ट हमारे इर्द गिर्द घूम रही है ना, इसमें जो टॉपर है वो है अक्षय कुमार। किस बेसिस पे भाई? उनके हर साल क्वांटिटी ऑफ मूवीज हमेशा टॉप पर रहती है यार, टॉप पर ही रहती है। एनीवेज, इस साल भी इनकी एक आध मूवी तो लाइंड अप है ही है, लेकिन अब इन्होंने भोजपुरी डेब्यू भी कर लिया है। हाँ जी, एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ रहे हैं और वो गाना है भोजपुरी। तो अक्षय कुमार की चौखट पर अगर कोई म्यूजिक मेकर, फिल्म मेकर, शो मेकर पहुंचता है तो वो शायद ही ना लेकर लौटता हो। अगर उसकी जेब में बजट है तो हाँ, डेफिनेटली हो जाती है। एक बार लड़की आपको इनकार कर सकती है प्यार मोहब्बत के लिए, लेकिन अक्षय कुमार आपके यहाँ फीचर होने के लिए ना बाबा ना। तो चलिए, मैं आरजे नुपुर ऑन द स्नो आगे और भी बातचीत करेगी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक फूडी साइड सोशल मीडिया पे क्या दिखा दिया है, जिसको देखकर आप भी इम्प्रेस हो सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, मस्ती मॉर्निंग शो पर आरजे नुपुर आपके साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: 40% off, 40% joy alukas,
2: 40% off, oh my god, let's go,
3: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: यू नो व्हाट, अगर डाइट के चक्कर में आप आम जैसे खूबसूरत फ्रूट को खाने से मना कर देंगे ना, तो आप मेरे दोस्त नहीं है, हो ही नहीं सकते यार। अब तो सेलिब्रिटीज भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सो हेलो, हाय, मैं आज यू नो पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहूंगी, रिसेंटली एक सेलिब्रिटी है जिन्होंने खुलकर लंच बॉक्स में रखे हुए आम की फोटो डाल दी है। बताऊं कौन कौन कौन कौन कौन? प्रियंका चोपड़ा जोनस, राइट। ये रिसेंटली इंडिया गई हुई हैं, हैदराबाद में इनका शूट चल रहा है और वहाँ इन्होंने आम लवर को जगा दिया और आम खाते हुए फोटो डाल दी। वाओ यार। एनीवे, सिंगापुर में आप भी इंडिया वाले आम मिस कर रहे होंगे। देखो, प्रियंका ने तो रास्ता निकाल लिया, वो इंडिया जाके आम खा रही हैं, तो आप सिंगापुर बैठ के तो आम खा ही सकते हैं। ऑर्डर कहाँ करना है बताओ? GGMartOnline.com पर, राइट। यहाँ ए टू जेड आपको ग्रोसरी तो मिलेगी मिलेगी, प्लस आप मैंगोज भी ऑथेंटिक ऑर्डर कर सकते हैं। देवगढ़ के अल्फांसो मैंगोज का बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं, रत्नागिरी के मैंगोज ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइसेस $39 एंड $35 पर बॉक्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके जो इम्पोर्टेड मैंगोज आएंगे ना, उसमें कोई भी हार्श केमिकल का बाहर से लेयरिंग नहीं होगा। जनरली हमें सुनने में आता है कि कैल्शियम कार्बाइड और भी बहुत सारे केमिकल्स आर्टिफिशियली मैंगोज ना खराब हो जाए तो उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है, राइट। सो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेफिनेटली अभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी है, जैसे कि आप कूपन कोड यूज करिए NEW10, हाँ जी, कैपिटल लेटर में NEW10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो और डिटेल्स के लिए पहुंचिए GGMartOnline.com। मैं आरजे इन पर और डिटेल के साथ कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है मेरी जान, बताती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल। मस्ती मॉर्निंग शो।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: आपको पता है होटल का खाना इतना शानदार क्यों होता है? क्योंकि वो ना जो उसका बेस होता है करी होती है ना, उसको पकाते जाते हैं इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना भूनते रहते हैं, उतना बढ़िया उसमें टेस्ट आ जाता है कि आपको घर बैठे वो टेस्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज मैं आज यहीं पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, तो जो चीज हल्के आँच में पकती जाती है ना उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। सो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी वो मूवीज जो हल्के आंच में पकी है, मतलब धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली बनी है ना, उन मूवीज का स्वाद भी काफी बदल जाता है, राइट? कल ही मैं एक कॉलम पढ़ रही थी तो मेरी नजर पड़ी कि ये जो ब्रह्मास्त्र मूवी का पार्ट 1 आया था ना, इसको बनते बनते ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। हाँ जी, फिल्म मेकर्स को बड़ा सारा डाउट था और जब ये मूवी निकल कर आई तो 600 करोड़ का रेवेन्यू इसने फर्स्ट शॉट में ही क्रॉस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ये बहुत अच्छी लगी, राइट? नंबर 2 मैं बात करना चाहूंगी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसकी वजह से आलिया भट्ट का जो करियर है ना वो और ज्यादा उभर गया। तो इस मूवी को भी 7 to 8 years लग गए बनने में, और जब इसकी प्लानिंग चल रही थी ना तो आलिया भट्ट नहीं, प्रियंका चोपड़ा दिमाग में थी, फिर बाद में सारा रिप्लेसमेंट हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर इस मूवी में और टाइम लग गया, फिर बाद में ये रिलीज हुई, तो ये अपने आप में आइकॉनिक एग्जाम्पल बन गई। सो ऐसी धीरे धीरे से होने वाली प्रोग्रेस को आप अंडर एस्टिमेट मत किया करो। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

ऐसा लग रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन नहीं बल्कि बॉलीवुड के डिवोर्सेस, सेपरेशंस, मूव ऑन, सिचुएशनशिप, ऐसी ऐसी बातें पढ़ते जा रहे हैं यार। ये सही डायरेक्शन में हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब इंडियंस के बीच का जो रिलेशनशिप है, आफ्टर मैरिज वाला जो बॉन्ड है, लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक ऐसा कंट्री जहाँ डिवोर्सेस सबसे कम होते हैं, जहाँ पतियों को भगवान और बीवियों को देवी माना जाता है, एंड ऐसी चीजों के बाद अगर डिवोर्सेस निकल कर आए तो बड़ा ही दिक्कतमय हो जाता है यार। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, आपको बताना चाहूंगी टेलीविजन स्टार्स तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा, जो कि बहुत सारे रियलिटी शो के भी हिस्से रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है यार। तो पिछले 4-5 साल से ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि शादी होने वाली है, इस साल तो होके रहेगी। तो अंदर के जो बात है वो तो है ये कि 2026 में दे आर गेटिंग मैरिड, बट फॉर अ वाइल इनकी पहली पिक्चर निकल कर आ चुकी है एंगेजमेंट की। हाँ जी, इन्होंने बड़ा ही प्राइवेट तरीके से एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है, बट आगे के लिए ये लोग रेडी नहीं है। ना, इन्होंने ये नहीं कन्फेस किया कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इन्होंने कह दिया वी आर नॉट रेडी फॉर इट, बट हाँ एंगेजमेंट जरूर कर ली है। चलो ठीक है, कुछ तो किया। एक तरफ डिवोर्स की बातें आ रही, तो दूसरी तरफ ऐसी आधी अधूरी बातें आ रही है, क्या बताऊं मैं यार। आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: ओ माय गॉड, ये हाइप अब हर तरफ बन चुकी है कि लड़कियों को ही सारे सुख क्यों दिए जाए, लड़कों को भी ये मौका दिया जाए कि वो कुछ अलग नजर आए। हाँ, रिसेंटली मैंने अदनान सामी का एक सॉन्ग देखा था जिसका टीजर था आई थिंक, ओके, जिसमें उन्होंने टैटूज वगैरह करवा रखे हैं अपने फेस पे, राइट, और उन्होंने मल्टीपल लेयर की ज्वेलरी पहनी है। यार, लड़के और ज्वेलरी, अरे यार, अब सब पॉसिबल है यार, डेफिनेटली। So, अगर आपके मन में भी गोल्ड, डायमंड, पोलकी और प्रेशियस ज्वेलरी से जुड़े हुए कोई भी डिजाइन्स चल रहे हैं तो अक्रॉस द आइलैंड कहाँ जाया जाए, सो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं सुरान गुड रोड सिंगापुर। एक्चुअली यहाँ पे जोया लुकास जो कि वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर है, यहाँ पे इनक्रेडिबली फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है मेकिंग चार्जेस पे, राइट, और ये ऑफर 14th ऑफ जून तक है बस। तो आप यहाँ पहुंच जाइए, 100% आपको वैल्यू मिल रहा है डायमंड एक्सचेंज पर, इजी पेमेंट प्लान्स भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो जोया लुकास जो कि वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर है, यहाँ के 40% फ्लैट मेकिंग चार्जेस की सेल का आप लुफ्त उठाइए और पहुंचिए 412 सुरानगुंड रोड आरजे नुपुर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: You know what? एक सही वक्त आता है और उस सही वक्त में आप बड़े पॉपुलर हो जाते हो और लोग आपसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा बात ये है कि तुम वायरल हो गए हो। भाई बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि उसने उससे पहले कितने सालों तक मेहनत करी है यार, और इतने सालों के बाद उसे अगर लाइमलाइट मिल रही है तो प्लीज यार जलो मत यार। सो एनीवेज मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि धुरंधर मूवी में पॉलिटिशियन सरकास्टिक पर्सन कह लीजिए, थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव रोल अदा करने वाले राकेश बेदी, हाँ जी, इनको धीरे धीरे से इंडस्ट्री टॉन्ट मार रही है कि इनकी चाल ढाल बदल गई है, इतनी बुढ़ापे में ये पॉपुलर हुए हैं और ये हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो रिसेंटली राकेश बेदी ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि मेरी चाल ढाल बिल्कुल सही चल रही है, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ और ऑफकोर्स मैंने पहले भी कभी इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहा हूँ। देखो कहा तो ऐसे ही जा रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड खा भी लेना चाहिए। हाँ मतलब इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं, कुछ तो अलग किया होगा ना आपने। हाँ आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का मतलब आप ये मत समझिए कि ये शादीशुदा है। इस बात का मतलब ये समझिए कि अब ना मंगल सूत्र की जो वो है ना वो कह सकते हैं सेल राइट वो थोड़ी बढ़ने वाली है। सो हेलो हाय मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज सेलिब्रिटीज जब वायरल होते हैं तो सिर्फ उनकी जो सिचुएशन है वही वायरल नहीं होती है, उन्होंने क्या कपड़े पहने, उन्होंने क्या ज्वेलरी पहनी है, ये सब वायरल हो जाती है। दैट्स एन आर्ट यार। सो हेलो हाय मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि रिसेंटली कंगना रनौत जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी जो है उसका शूट में लगी हुई है। सुनने में तो ये भी आया था कि तन्नु वेड्स मनु के अगले पार्ट में लगी हुई है, लेकिन इनकी ना साड़ी पहनकर मंगलसूत्र में जो फोटो है वो वायरल हो गई राइट। और लोगों ने क्या कह दिया कि भाई कंगना रनौत ने शादी कर ली, शादी कर ली, शादी कर ली। तो इनको खुल कराना पड़ा बिकॉज कंगना रनौत को पता भी है यार सोशल मीडिया पे बोलना अच्छा रहता है, ठीक है जो भी है मन में बोल दो। तो कंगना रनौत ने बोला मैं किसी कैरेक्टर के मेकअप में थी और किसी ने मेरी शूट में से पिक्चर डाल दी, मैंने शादी नहीं की है, मेरे कैरेक्टर ने शादी की है जो आपको अगली मूवी में नजर आएगा। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं पीआर स्टंट भी हो सकता है, यू नेवर नो यार। अपन तो एकदम भोले लोग हैं, हमें लगता है कि हो ऐसा हो गया। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो ऐसा होता है कि जब हम एक जगह पर रोज रोज रोज जाते हैं ना, वो चाहे हमारा ऑफिस हो, वो चाहे हमारे दोस्तों का ग्रुप हो, वो चाहे यूं ही कैंडिड फ्रेंड्स हो, वो चाहे घर वाले क्यों ना हो यार, हम अगर वहां पे रोज रोज रोज रोज दिखते हैं ना, तो आपकी इंपॉर्टेंस शून्य बराबर हो जाती है। घर की मुर्गी इज दाल बराबर। सो एनीवेज, मैं आज हूं ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे सेलेब्स में वरुण धवन को ये कैटेगरी दी गई है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली, राइट? हाँ, तो भाई वरुण धवन ने अपना बेस्ट ट्राई कर दिया, वो चाहे मतलब बॉर्डर मूवी क्यों ना हो, इन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन हमको इनका बेस्ट समझ में नहीं आया। आज तक वरुण धवन की कोई एक मूवी ऑर्गेनिकली अगर लोगों को पसंद आई है तो वो है भेड़िया, राइट? और उसको भी अगर ये आगे बढ़ा देंगे तो वी नेवर नो कि वो दोबारा पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। पर अब सुनने में आ रहा है कि वरुण धवन एक पांव हल्का सा हॉलीवुड की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, राइट? छोटा सा डेब्यू ये उसमें भी कर सकते हैं, और छोटे मोटे ऑफर इनको भी आए हुए हैं। बिल्कुल, जब यहाँ वाले इंपॉर्टेंस ना समझे तो वहां वालों के बीच में जाकर देखो, शायद कुछ दाल गल जाए। आरजे इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: अच्छा आज तक वो कितने एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने जब अपना प्रोडक्शन हाउस खोला या फिल्म मेकिंग में वो एंटर हुए तो वो मूवी बहुत चली हो बहुत कम ही ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो रंग लाए हैं। सो हेलो हाय, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। सो आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लिस्ट है ना ये अब बढ़ती जा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये एक्टर्स क्यों क्यों क्यों फिल्म मेकिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन भाई इनका इच्छा है यार, इनका रिटायरमेंट प्लान ही यही होता है। हाँ, सो राजकुमार राव एंड उनकी वाइफ पत्रलेखा भी जो है ना वो प्रोडक्शन लाइन में एंटर हो चुकी हैं। ऑलरेडी इनकी एक मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एंड डेफिनेटली इनकी जो मूवी है वो लाइंड अप है जिसका नाम है रफ्तार। एग्जैक्टली देखो, ये पहले इस मूवी को ना OTT पर जुलाई के महीने में रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने पोस्टपोन करके 16th of October की डेट डिक्लेयर कर दी है। राइट, सो अब इनकी मूवीज जो है रफ्तार वो कितने रंग लाएगी और ये जो एक्टर्स हैं वो धीरे धीरे से फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, आपको ये ट्रेंड पसंद आ भी रहा है या नहीं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

आप भेदभाव का नया एग्जाम्पल, हाँ जी, सुनना चाहेंगे? भेदभाव से मतलब मेरा ये है कि सच में किसी के संग बड़ा बुरा हो रहा है और दूसरे के संग बड़ा अच्छा हो रहा है। सो हेलो, हाय, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी लगती है ना, अंदर से उतनी खोखली निकलती है, राइट? और ये दीमक बहुत सालों पहले से लगी हुई है। रिसेंटली एक आध साइड के एक्टर्स ने एक बात कन्फेस करी कि जो लीड एक्टर्स सेट पे होते हैं ना, उनके लिए खाना एकदम अलग रेंज का आता है, और जो साइड के एक्टर्स और क्रू मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए खाने की क्वालिटी एकदम अलग आती है। भाई साहब, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ, देखो, सिंगापुर में रहते रहते तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी नॉर्थ इंडियन कुजीन की कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में, रैफल सिटी सेंटर, राइट? और अब तो यार 25 साल हो चुके हैं इन्हें, और 25 साल पर एक स्पेशल ऑप्शन भी है। अगर आपकी टेबल का बिल मिनिमम 100+ डॉलर होता है तो आपको ना 25th एनिवर्सरी का स्पेशल ऑफर मिलेगा, जिसमें कुछ डिशेस आपको मात्र 25+ डॉलर में मिल जाएंगी, लाइक मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, शाही फिश, अमृतसरी करी, पालक पनीर, शाही सब्जी सिजलर, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको 25+ डॉलर पे मिल जाएगी। ये है इनका 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और ये वैलिड है 30th जून तक। मिनिमम 100+ डॉलर पर टेबल होना चाहिए, ओके? डाइन इन के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, रिजर्वेशन करवा लो www.shahimaharani.com पर। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: you, Tushahi Maharani, for the special treat.
1: Thank you, Tushahi Maharani, for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: जान टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: क्या आप एक भले इंसान है, बहुत सीधे इंसान भी है और आप किसी का बुरा नहीं सोचते? ओ ओ ओ ओ ओ, तब तो आपके संग गड़बड़ हो सकती है यार। ऐसा होता है, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके संग कभी बहुत अच्छा हो नहीं पाता। ऐसा सच है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ यार। अपना दुख तो डिटेल से बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आरजे रिपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी, बॉलीवुड में जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ी टीम होती है ना, इनकी आजकल अच्छी खासी आप कह सकते हैं डिमांड शिमांड चल रही है, इनकी स्ट्राइक चल रही है, बिकॉज अभी तक इनकी पूरी पूरी सैलरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मिली नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो है ना, मतलब पूरा बॉलीवुड शट डाउन करने की तैयारी में है, राइट? ताकि फिल्म मेकर्स का नुकसान हो और उन लोगों के पेमेंट्स जो है ना, वो टाइम से क्लियर करे जाए। तो ठीक है, ग्लैमर वर्ल्ड में सिर्फ ऊपर की क्रीम हम पेपराजी फोटोग्राफर्स की तरफ से देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड की हसल कहां दिखाई देती है। बाय द वे, आपकी लाइफ की जो रिलेशनशिप हसल है, उसको जरूर हम आरजे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट?

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट,
1: दे आर हैपनिंग।
2: From rocking the charts to ruling the countdown, yeah, Musti Top 20, pumping up Friday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest, the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7 Live, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
4: का। अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
5: टाइम टू रेज द बार।
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
4: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
5: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
4: थैंक यू
6: थैंक यू
5: थैंक यू
3: थैंक यू वी लव यू।
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wedge and Non-Wedge dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
2: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल
1: गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
4: जय

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेली है।
5: जोश में रहो।
6: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
7: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
2: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh mein
6: raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Fir haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musti Music Cafe.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: मैं महाकवि रविंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना?
2: नहीं, खुश।
1: पूरे जुमले का मतलब क्या है
2: तुम्हें मालूम नहीं? इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है।
3: कर दी ना आते ही बहुत ही कमाल के पते की बात। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शुरू हो चुका है डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपके अंतरा, यहाँ पर आप पहुंचे हूँ अलोंग विद ऑफ कोर्स माय अदर जॉक्स, जो कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए हाजिर हो चुके हैं। आज का शो शुरू करने से पहले मैं इस तरह से इस बात से शुरू करना चाहती थी, क्योंकि हाल ही में देखे मैंने ये मूवी वापस से, एंड लाइक एवरी सिंगल टाइम ये जो डायलॉग है, इट जस्ट स्टेड विद मी। बहुत ही ब्यूटिफुल। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। एंड सच में लाइफ ना काफी सिंपल होती है, हम ही कभी कभी उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कभी ओवर थिंकिंग से, कभी एक्सपेक्टेशन से, कभी इस डर से कि अगर हमने अपनी बात शेयर की तो सामने वाला कभी समझेगा या मुझे सिर्फ जज करके निकल जाएगा। और फिर होता क्या है, हम बातें अंदर ही अंदर रिपीट करते रहते हैं, सेम थॉट, सेम वरीज, जैसे दिमाग में कोई सॉन्ग लूप पे चल रहा हो। और बाद में कभी कभी हम खुद ही सोचते हैं कि यार इतना सोचने की जरूरत तो नहीं थी, बट उस वक्त वो फीलिंग्स काफी रियल होती है। इसी सिंपल थॉट के साथ हमने डियर मस्ती दिल से का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शो है, उसको क्यूरेट किया कि अगर कोई ऐसा हो जो हमें पर्सनली जानता ना हो तो शायद हम उससे अपनी बात ज्यादा ऑनेस्टली कह पाएंगे, विदाउट फियर, विदाउट जजमेंट। क्योंकि कई बार अपने लोगों के साथ ही सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि वो क्या सोचेंगे। और देखिए ना, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की पर्सनालिटीज हैं, एंड ऑनेस्टली टू ईच टू देयर ओन। हमें हर किसी के हिस्से का सोचने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी अपने थॉट्स हैंडल करते करते काफी थक जाते हैं, तो शायद कभी कभी बस अपना सोचना भी ओके होता है। जैसे फ्लाइट में सबसे पहले आपको ये बोला जाता है दैट पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट एंड देन हेल्प अदर्स। सेल्फिशनेस नहीं है वो, सर्वाइवल है दोस्त। और शायद इमोशनल लाइफ में भी ये रोल अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर डियर मस्ती दिल से। लेकर आती हूँ आज की पहली चिट्ठी, जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: 40% off, 40% joy Lucas.
3: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपकी अंतरा यहां पर आपके साथ, और ये शो एक काफी सेफ सा स्पेस है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक ऐसी जगह जहां हम बन जाते हैं रेडियो पर बैठे हुए आपके वो दोस्त जो वैसे तो स्ट्रेंजर्स हैं, बट वी लिसन एंड वी डोंट जज। सच बताऊं, कभी कभी लाइफ में ना बस इतना ही तो चाहिए होता है कि कोई बिना जज किए हमें सुन ले, और मुझे लगता है आज की ये चिट्ठी भी शायद वही कहना चाहती है। तो शुरू करते हैं। डियर मस्ती, मैं अपने इंट्रोडक्शन में अक्सर ट्रेलिंग वाइफ कहती हूँ। ये वर्ड मैंने नहीं, दूसरों ने मुझे दिया। जहां जहां हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ मैं भी साथ चली गई, और अब यहाँ पे सिंगापुर में सेटल हूँ फिलहाल। हर जगह घर बनाया, लाइफ सेट की, बट रिसेंटली एक बात रियलाइज हुई कि थोड़ा थोड़ा करके शायद मैं खुद को खो बैठी हूँ। लोग कहते हैं व्हाट अ सैक्रिफाइस, सिर्फ औरत ही कर सकती है। मोमेंटरली अच्छा लगता है, बट इवेंचुअली अच्छा नहीं लगता है। अब मैं खुद से पूछती हूँ, हु एम आई? क्या मेरी आइडेंटिटी जस्ट अ ट्रेलिंग वाइफ रह गई है? डियर लिसनर, आपको शायद ये जानकर थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, बट स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी ट्रेलिंग स्पाउसेस जो हैं, स्पेशली वुमेन, इस आइडेंटिटी लॉस फेस से गुजर रही हैं। नए शहर, नए लोग, पार्टनर का करियर सेटल करते करते कई बार अपनी इंडिविजुअलिटी क्वाइटली वो साइड हो जाती है, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है कि मेरे बारे में क्या। और आपका ये सवाल भी इसीलिए उतना ही वैलिड है। यू नो, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से एक बात बार बार सिखाई हुई है, एंड ऑनेस्टली वो मेरे अंदर इनग्रेन सी हो गई है। मेरी मॉम आज भी वर्किंग है, एंड वो हमेशा कहती थी और अब भी कहती है कि बेटा बाकी सब बात में, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर बनना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस एक इनविजिबल पावर देती है जिसका इम्पोर्टेंस शायद उस वक्त समझ नहीं आता, बट डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो बहुत काम आती है। और शायद इसीलिए लाइफ कितनी भी क्योटिक हो, मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रही है, आई विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू स्टे इंडिपेंडेंट। अब तो वो मेरी हैबिट भी है एंड पर्सनालिटी भी, बट क्या हर ट्रेलिंग वाइफ को ये सब अकेले फिगर आउट करना चाहिए? क्या सिर्फ ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को बार बार रीबिल्ड करे? लेट मी कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। इनफैक्ट ये गाना तो इस वक्त बिल्कुल ही एप्ट बैठता है। पीछे तो पीछे तो आ गए, पर उसके बाद क्या? Stay tuned, let's talk more on Dear Masti, दिल से।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं आपके अंतराय फिलहाल यहां पर आपके साथ। थोड़ी देर पहले हमने एक लेटर पढ़ा जहां पे एक लिसनर हमारे हैं, उन्होंने कहा दैट सालों तक ट्रेनिंग वाइफ बनके हर जगह घर बसाया, बट समवेयर इन द प्रोसेस शी फील्स शी लॉस्ट हरसेल्फ एंड नाउ शी इज आस्किंग हु एम आई बियॉन्ड दिस। You know, there is this beautiful scene in Dear Zindagi जहाँ पे शाहरुख खान playing Dr. Jahangir वो कुछ ऐसा कहते हैं।
1: कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं। पर why? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें?
0: That's right. और मुझे लगता है माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, ओके, क्योंकि आपने वो सवाल खुद से पूछा कि मैं कौन हूं। एंड बिलीव मी दैट इटसेल्फ इज अ बिग बिग स्टार्ट। हो सकता है अभी रास्ता थोड़ा लंबा लगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, कभी इधर कभी उधर, बट हर स्टेप के साथ क्लैरिटी आती है, दैट्स फॉर श्योर। और आज के बाद प्लीज अपने लिए ना ये जस्ट वर्ड यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। जस्ट होम मेकर, जस्ट ट्रेलिंग वाइफ, जस्ट मॉम, नो। मैंने बहुत बहुत लड़कियों को ये बोलते हुए सुना है एंड हर बार मुझे लगता है कि डू दे इवन रियलाइज कितना कुछ करती हैं वो। आप भी बहुत कुछ करती हो और जब आप अपने खुद के काम को एक्नॉलेज करना शुरू करोगे, इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, तब दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नजर से देखना शुरू करेगी। क्योंकि ये जस्ट वर्ड आपका नहीं है, ये सोसाइटी की पुरानी कंडीशनिंग का दिया हुआ एक वर्ड है। और थोड़ी देर पहले जो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उस इनविजिबल पावर को फील करो। मुझे नहीं पता आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, बट मे बी दिस इज योर साइन टू फिगर इट आउट। देखिए आजकल रिमोट वर्किंग है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज जो है वो है, स्किल्स डेवलप करने के कितने सारे तरीके हैं। आप ट्रैवल करती हो, सिटीज चेंज करती हो, तो मे बी फ्लेक्सिबल वर्क, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या कुछ क्रिएटिव, वो डायरेक्शन हो सकता है। और अगर अभी अर्निंग पॉसिबल नहीं भी हो, देन स्टार्ट विद डेवलपिंग योर स्किल्स। खुद में इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं जाता। और हाँ, एक प्रैक्टिकल बात और, घर को संभालना, सबको इमोशनली हैंडल करना, ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स योर पार्टनर्स टू। तो उन्हें इन्वॉल्व करिए, कॉन्वर्सेशंस करिए, उन्हें बताइए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार लड़कियां जो है ये सोच लेती हैं कि उसको बता के क्या करना है, एंड साइलेंटली हम सब हैंडल करते रहते हैं, बट मे बी ही जेन्युइनली हैज नो आइडिया कि आप क्या फील कर रही हो। सो लेट हिम बी अ पार्ट ऑफ योर थॉट्स एज वेल, क्योंकि चेंज हमेशा बाहर से नहीं आता है, कई बार वो अंदर से शुरू होता है, एंड मे बी दिस इज योर न्यू चैप्टर। ये है डियर मस्ती दिल से, होप दिस हेल्प्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: To Shahi Maharani for the special treat.
4: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
5: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you. We love you.
1: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Dear Masti, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. And it's already my turn. Radio Masti 24/7 par swagat hai aapka. Dear Masti, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता
8: है। और अब इस अनजाने इंसान की बारी है। एक बहुत ही आई वुड से समथिंग वेरी रियल, एक बहुत ही ऐसी चिट्ठी जो हमारे पास आई है। थोड़ी लंबी है तो साथ दीजिएगा। रेणुका पढ़ रही है यहाँ पर इस चिट्ठी को। माई हस्बैंड एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर एवरी नीड ऑफ हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेडिकल एक्सपेंसेस टू इवन नर्सिंग होम फीस फॉर अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन माई फादर इन लॉ वॉज व्हील चेयर बाउंड एंड बेड रिडन। दिस इज डिस्पाइट बींग वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स। माई ब्रदर इन लॉ आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ वॉन्टेड टू लुक आफ्टर हिज मॉम सो दैट वी कुड लिव फॉर आर सेल्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही सक्कम्ब टू a terminal illness and passed away a few years ago. When diagnosed with his illness, he made a will in which he not only provided well for his children and his ex-wife, who had since remarried and legally should have been omitted, but also included a small provision for his mum should she outlive him. Sometimes, before moving in with him, somehow my mum-in-law withdrew a fair amount of money from a bank account she had with me and gave it to her younger son. These funds were actually monies given to her by my husband through the years. Sometime later, he needed some funds and used up that money without her knowledge and was unable to return it to her when she found out. And unfortunately, he passed on and the money was gone. His son, a student in his 20s, was aware of this. After the demise of the father, the son started using all funds that were supposed to be given to the grandmother to settle estate matters. Finally, we asked him about the funds that his father had taken from the mother, and only then did he return that to us. My brother-in-law was sole owner of the house he had bought so that his mom could stay with him. He had willed a small percentage of the sale of the house to his mother. Since the sale of the house, our nephew has yet to give his grandma her share. He claims he has invested it overseas and will be giving her small amounts regularly. We literally had to ask him about it. He has only started giving pitiable amounts recently. मेरा सवाल ये है कि जब वो नहीं है टेकिंग केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर और कभी भी उसने नहीं उनका ध्यान रखा, व्हाट राइट हैज ही टू होल्ड हर मनी? वी फील एम्बेरस्ड उन पैसों को मांगने के लिए जो राइटफुली हमारी मदर इन लॉ के हैं. माई हस्बैंड पेड ऑल एक्सपेंसेस फॉर माई फादर इन लॉज फ्यूनरल, इवन गिविंग स्मॉल अमाउंट्स टू हिज सिस्टर एंड अदर ड्यूज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. वी आर जस्ट अफ्रेड दैट डीलिंग विद द इवेंचुअल फ्यूनरल एक्सपेंसेस फॉर माई मम इन लॉ इज गोइंग टू ड्रेन अ लॉट ऑफ आर मीगर सेविंग्स एंड दैट वी शुड नॉट हैव टू, स्पेशली व्हेन शी डज लीगली एंड राइटफुली हैव द मनी विच हैज बीन विल टू हर. वी टू आर एजिंग एंड नीड आर ओन सेविंग्स. वी आर नॉट ग्रीडी फॉर द मनी बट डजंट अ सन हैव अ राइट टू हिज पेरेंट्स फाइनेंसेस, स्पेशली इफ ही हैज बीन द ओनली वन लुकिंग आफ्टर देयर एवरी नीड. How do we get the grandson to give his grandmother the funds? The lawyer, known to both parties, thinks the youngster will not give the money, perhaps as the inheritance has gone to his head. We don't want to resort to legal action as this is a family issue. Sorry for the long story, but you may be the only one to give advice knowing the facts. Thank you so much for writing this to us and to all our listeners. ये कहानी थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन बहुत से घरों की असली कहानी है. थोड़ा सा ब्रेक, वापस आके इस कहानी का जवाब. स्टे ट्यून्ड, दिस इज डियर मस्ती दिल से.

डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. वेलकम बैक, एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती, दिल से, अनोनिमस लेटर्स का ये सिलसिला जो कि हम यहाँ पर हर ट्यूसडे को करते हैं, वहीं पर थोड़ी देर पहले मैंने एक चिट्ठी पढ़ी थी, काफ़ी लंबी चिट्ठी थी. तो जी हाँ, उसको क्विकली आई वांट टू रिमाइंड यू ऑफ व्हाट दैट वाज अबाउट. सो वेल, इट्स अबाउट सम मनी विच वाज विल्ड टू अ मदर बाय अ सन हु हैज पास्ड ऑन. लेकिन उस बेटे का जो बेटा है वो आज के दिन में बेच चुका है घर, लेकिन जो उसकी दादी के नाम पैसे छोड़ गए थे उसके डैडी, वो अभी उनको साफ साफ वो पैसे नहीं दे रहा है. मुश्किल से बात करने पर थोड़े बहुत पैसे दे रहा है. सो वेल, व्हाट शुड द अदर सिबलिंग डू, जिनके पास हमेशा से माँ रहती आई है और पिताजी की भी सेवा अकेले उन्होंने ही करी है. Well, सबसे पहले आई डू वांट टू से कि ये जो चिट्ठी है पैसों के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयर, गिल्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल एग्जॉशन. ऑनेस्टली, बहुत से फैमिलीज इस तरह, जो व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू, दे गो थ्रू इट क्वाइटली, स्पेशली जब एक बच्चा स्टेप्स अप एंड बिकम्स द प्राइमरी केयर गिवर और बाकी जो होते हैं बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. व्हाट स्टैंड्स आउट इन योर स्टोरी इज दैट यू एंड योर हस्बैंड स्टेप्ड अप कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेजनली बट फॉर ईयर्स. आपने मेडिकल एक्सपेंसेस, नर्सिंग केयर, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इवन फ्यूनरल कॉस्ट ऑफ योर फादर इन लॉ, आपने सब कुछ ध्यान रखा. दैट डिजर्व्स एक्नॉलेजमेंट. और उसी समय केयर गिविंग जो है, इट शुड नॉट बिकम साइलेंट सेल्फ सैक्रिफाइस टू द पॉइंट वेयर योर ओन ओल्ड एज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर एट रिस्क. कमिंग टू द ग्रैंडसन, लीगली और मॉरली, the money that was willed or meant for your mother-in-law should ideally remain accessible for her care and her needs. The concern is understandable, especially agar jo funds hain wo control ho rahe hain by somebody who is neither the caregiver nor transparent about the finances. Lekin isse pehle ki ye ban jaye ek bada family fracture, perhaps the first step is not confrontation but clarity. इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं, लेकिन आपको कुछ बातें पर कहना चाहूंगी. सेपरेट कीजिए इमोशंस को फैक्ट से. जो पैसा है उसको लिस्ट कीजिए और देखिए एक तरफ एक्सपेंसेस कितने हैं और एक तरफ कितने पैसे आप खर्च चुके हैं इन द पास्ट ऑन योर मदर इन लॉ. अंडरस्टैंड द लीगल पोजिशन क्वाइटली. किसी को थ्रेटन नहीं कीजिए. एक प्रॉपर कंसल्टेशन एक इंडिपेंडेंट लॉयर से लीजिए जो कि दोनों सबको नहीं जानता है. बट इसी के साथ में आप ये समझिए कि आपको लीगली कितना विल हुआ, हु कंट्रोल्स द एस्टेट और हु हैज द राइट्स टू व्हाट ग्रैंडमदर एक्चुअली हैज. और उसके बाद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन ग्रैंडसन के साथ. डोंट ब्लेम, फोकस ओनली ऑन द ग्रैंडमदर्स केयर एंड फाइनेंसेस. पूछिए कितने पैसे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं और मंथली अमाउंट इन खर्चों के हिसाब से किस तरह से रिलीज किया जा सकता है फॉर हर केयर एंड कैन द रिकॉर्ड्स बी शेयर्ड ट्रांसपेरेंटली. और उसके बाद हर

Finally, a few words from me to you. Do not carry guilt for wanting fairness. There is a difference between caring with love and carrying everything alone in silence. Families survive karti hain difficult situation sirf sacrifice se nahi, lekin honesty, structure aur shared responsibility se. आई होप ये हमारा जवाब आपको लंबा ज़रूर लगा होगा, लेकिन शायद थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में, सोचने में, अगले कदम उठाने में हेल्प ज़रूर किया होगा. स्टे ट्यून्ड.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क

0: We're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
1: जो बातें मूवीज में क्यूट लगती है वो रियल लाइफ में रूड लगती है, इसीलिए करने से पहले सोचिए. सो बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ. एंड फिल्मों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ क्यूट लगती है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही रूड लगती है यार. सो डेफिनेटली लड़ाई नहीं करना चाहते हैं हम, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाती है हर बार. ये हेल्दी रिलेशनशिप का असर नहीं हो सकता मेरी जान. सो डेफिनेटली अभी मेरे हाथों में डियर मस्ती दिल से शो पर जो लेटर आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि वो हमेशा ऑनलाइन होता है, स्टोरीज वगैरह भी वो सीन कर देता है, लेकिन मेरे मैसेजेस सीन करके भी रिप्लाई घंटों घंटों बाद देता है. तो अभी तो दोस्ती बहुत ही कच्ची पक्की सी चल रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस शख्स को इम्पोर्टेंस दूं ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं. सोशल लाइफ मतलब सोशल प्लेटफॉर्म की लाइफ जो है ना और रियल लाइफ जो है ना, इन दोनों चीजों में 360 डिग्री का डिफरेंस है. आप सामने वाले शख्स को अभी दोस्त मान रहे हैं, आप उससे मिलिए. अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अपना फोन टच करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है ना, आप इतना ज्यादा बातों में मशरूफ है कि आपको पूरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं हो रही है, तो भाई साहब आप एकदम अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में जाने वाली हैं. लेकिन मिलने के दौरान भी ये डिस्टर्बेंस चल रहा है कि वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तब ये अलार्मिंग सिचुएशन है. आप मेरा एग्जाम्पल ले लो यार, मैं तो चलते फिरते कितनों के मैसेजेस सीन करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बिजी होती हूँ. मन में आता है कि चलो थोड़ी देर में रिप्लाई करूंगी, लेकिन बाद में मैं भूल जाती हूँ. क्या पता उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो, यू नेवर नो. फिलहाल व्हाट आई नो कि अगला गाना कौन सा आ रहा है.
2: आज से जाने मन दिल है तुम्हारा.
1: बिल्कुल ऐसे ही मीठे गाने और मीठी बातें मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ, ओनली ऑन डियर मस्ती दिल से शो पर.

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: देखो, ये जो कॉम्बो ऑफर्स होते हैं या कंपैरिजन ऑफर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ग्रोसरी की दुकानों तक अच्छे लगते हैं, इंसानों में नहीं। सो प्लीज किसी को किसी से कंपेयर करना छोड़ दो, प्लीज यार। बिल्कुल, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, डियर मस्ती दिल से शो पर, मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मेरे अंदर लाख कमियां होंगी, लेकिन एक अच्छाई ये है, मैंने आज तक किसी एक की वीकनेस को किसी और के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कंपेयर नहीं किया। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को किसी और का एग्जाम्पल देकर ये नहीं बोलती कि सुनो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर तो है। नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, सबके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, बस ढूंढने वक्त की देर होती है। सो बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर, मैं आरजे नुपुर, मेरे हाथों में ढूंढ के ला चुकी हूँ अगला लेटर जो आप हमें भेजते हैं अपने मन की बातें खुलकर लिखकर। सो अभी जो मेरे हाथों में लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि हाय, मुझे ये कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पिछले कई सालों से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जिसके साथ हूँ मैं, जो मेरा पार्टनर है, वो मुझे हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कंपेयर करता रहता है पॉजिटिवली, कि तुम में वो बात है वो उसमें नहीं थी, लेकिन वो मुझे कंपेयर करता रहता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उसकी बातों का क्या रिएक्शन देना चाहिए। शुरुआत में तो ये चीज़ें मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन अब थोड़ी अटपटी लगने लगी है। सो डेफिनेटली अगर आपकी जगह मैं भी होती ना, तो मुझे अटपटा लगता। तो अभी मैं सिर्फ आपके बंदे के लिए जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सबके लिए ये जवाब देना चाहूँगी कि देखो, बचपन से ही हमें ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमारे मार्क्स कंपेयर किए गए, थोड़े और बड़े हुए तो भाई करियर कंपेयर किए गए, फिर और बड़े हुए तो कई बार फिटनेस के मामले में या बॉडी शेपिंग के मामले में भी हमें किसी ना किसी ने कंपेयर कर लिया। सो वी डोंट लाइक कंपैरिजंस एट ऑल, है ना। बहुत वंस इन अ व्हाइल जब कॉम्प्लीमेंट की तरह ये जुबान पर आ जाए, वो भी ऑर्गेनिकली आ जाए, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप बात बात पे किसी को किसी से कंपेयर करेंगे तो सही नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सबसे पहली बार में अपने पार्टनर को टोका नहीं, दैट्स द मेन फॉल्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम ही किसी को बोल देते ना कि प्लीज यार मुझे किसी से कंपेयर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतना आप ब्लंटली बोल देते ना, तो शायद ये बात इतनी आगे तक आती नहीं। और अभी भी देरी नहीं हुई है, आप बोल दीजिए कि आपको नहीं पसंद है एक ही कटघरे में किसी और के साथ खड़े होना, आप जैसी हैं उतनी ही बेहतर हैं, उतनी ही खराब है, एक्सेप्ट करना हो तो करो। आप एक बार बोलकर देखिए, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी यार। फिलहाल मेरे हाथों में जो हिम्मत है वो है अगले

0: बिल्कुल ऐसे ही प्यारे गाने जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर आरजे नुपुर आपके साथ।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द माइक येट अगेन माय डियर फेलो जॉक्स. गुड इवनिंग, रेणुका इज बैक ऑन द एयरवेव्स. जी हाँ, वो चिट्ठी जो मेरे नाम लिखी गई है उसको लेकर. डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. इस चिट्ठी को आप ध्यान से सुने तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जिन्होंने लिखी है उनको भी बहुत सहारा मिलेगा. हाय डियर मस्ती दिल से, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस पब्लिकली बिफोर. इन फैक्ट ये चिट्ठी लिखने से पहले भी माई हैंड्स आर शेकिंग. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड समवन आई ट्रस्टेड क्रॉस्ड अ लाइन विद मी. एट दैट एज मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे ये पता था कि समथिंग फेल्ट रॉन्ग, अनकंफर्टेबल एंड स्केरी. फॉर ईयर्स आई बरीड इट डीप इनसाइड बिकॉज आई वॉज अफ्रेड नोबडी वुड बिलीव मी. एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉरगेट इट माई सेल्फ. लाइफ मूव्ड ऑन, स्टडीज, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड फ्रॉम द आउटसाइड मैं बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ. But the truth is, some memories really never leave. Even today, certain situations, certain words, certain behaviors trigger anxiety in me. I struggle with trust, with emotional closeness, and sometimes I suddenly feel angry or withdrawn without understanding why. The hardest part is this. I keep questioning myself. Why am I still affected after so many years? Why can't I just move on? I have never told my family. A few close people know parts of it, but not everything. Sometimes I feel guilty even bringing it up because I tell myself others have gone through worse. But deep inside, I think that child in me is still carrying fear and confusion. How does someone truly heal from something they never properly processed? And is it too late to seek help after so many years? Gee. सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और बहुत क्लियरली लिखा है हमारे इन सुनने वालों ने, लिखने वाले ने, कि उनके साथ जो भी बचपन में हुआ आज तक उस ट्रॉमा से वो आगे नहीं निकल पाए हैं. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड देन ऑफ कोर्स वापस आके इस चिट्ठी का जवाब दूंगी मैं. इट्स डियर मस्ती दिल से, वेयर योर लेटर्स, योर फीलिंग्स, योर वर्ड्स रिमेन अनोनिमस नो मैटर व्हाट.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, डियर मस्ती दिल से पे आपका एक और स्वागत दोबारा से रेणुका कर रही है। छोटे से ब्रेक से पहले हमने यहाँ पर बात करी थी एक चिट्ठी की, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई थी बचपन में, एंड द स्ट्रगल ऑफ डीलिंग विद दैट एज अ पर्सन ग्रोज अप, द ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और अंदर ही अंदर वो घबराहट, वो हाथों का कांपना सोच सोच के कि शायद इतने सालों बाद भी व्हाई एम आई नॉट एबल टू गेट ओवर इट। Dear Masti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, बिकॉज स्पीकिंग अबाउट चाइल्डहुड सेक्सुअल असोल्ट टेक्स इमेंस करेज। और अगर आज आप में से कोई भी ऐसा इंसान हमें सुन रहा है और रिलेट करता है इस चिट्ठी से, तो प्लीज हियर दिस केयरफुली। जो भी आपके साथ हुआ छोटा नहीं था, इट वॉज नॉट इमेजिन्ड एंड नॉट समथिंग यू शुड हैव हैड टू कैरी अलोन। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा ये होता है कि लोग सोचते हैं ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा समय के साथ, बट मेनी टाइम्स ट्रॉमा डज नॉट डिसअपियर, इट जस्ट गोज क्वाइट एंड हाइड्स इनसाइड द बॉडी, इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड रिएक्शंस। इसलिए अगर कोई सिचुएशन इसको ट्रिगर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, फियर, एंगर, ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल शटडाउन, दैट डज नॉट मीन कि आप कमजोर हैं। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ यू नेवर गॉट सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग और क्लोजर। एंड नो, इट इज एब्सोल्यूटली नॉट टू लेट टू सीक हेल्प। हीलिंग डज नॉट ऑलवेज बिगिन व्हेन द इंसिडेंट हैपेंस, समटाइम्स हीलिंग बिगिन्स ईयर्स लेटर, जब आप अपने अंदर के जो सारी की सारी पेन है उसको एक्नॉलेज करते हैं और इमोशनली सेफ फील करते हैं। एंड हीलिंग ऑल्सो डजंट मीन फोर्सिंग योर सेल्फ टू फॉरगेट, इट मीन्स स्लोली लर्निंग दैट व्हाट हैपेंड टू यू शुड नॉट डिफाइन योर एंटायर आइडेंटिटी और फ्यूचर। टॉक टू अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट, ट्रॉमा काउंसलर, या इवन एक ऐसा इंसान जैसे कि हम, इमोशनली सेफ, जो जेन्युइनली आपकी मदद कर सकते हैं, नॉट बिकॉज यू आर ब्रोकन, बट बिकॉज कैरिंग पेन अलोन फॉर इयर्स, इट्स एग्जॉस्टिंग। एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर ट्रॉमा विद समवन एल्सेस। पेन इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। जो भी आज हमें साइलेंटली सुन रहा है या जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वो हमें सुन रही हैं, अगर आपको बचपन में आपके साथ कुछ हुआ and you are still struggling emotionally, mentally, relationally because of it, your feelings are valid and support is allowed. Difficult zarur hai ye conversation, lekin pure compassion ke saath mein, we believe you and we are with you. If there's any follow-up letter, please do write to us. Dear Masti, dil se.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Dear Masti, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
6: Welcome back to Dear Masti Dilte on Radio Masti 24/7 Live. Yes, Antra is back and ek ek karke jo hai hum sabhi jo yahan pe RJs hai chahe wo Nupur ho chahe wo Renuka ho, we are coming, we are reading your letters, we are and we want you to feel safe in this space which we have created only for you. Jahan pe agar aapko bhi kabhi aisa lage ki you have something to say about this, feel free to do so. 915-8963 पर. अच्छा, कभी नोटिस किया है कि जब हमें अचानक से चोट लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जुबान से निकलता है कि ओ मम्मा यार चोट होती है, इतनी जोर से थोड़ी नहीं लगती थी. होता है ना, अब ये जरूरी नहीं कि मम्मा ही बोले हम, बट यूजुअली कोई एक नाम होता है, एकदम इंस्टिंक्टिवली हमारे जहन में सबसे पहले वो नाम आता है. कभी सोचा है क्यों? Because somewhere in our brain, we remember it like a safety net. वो एक इंसान जिसके बारे में दिल को लगता है कि ये है तो I will be fine. वो पर्सन जो डिस्ट्रेस में, कंफ्यूजन में, प्रॉब्लम में सबसे पहले याद आता है. तो आज जो है हमारा सवाल भी आपसे कुछ ऐसा ही है. But who is your first go-to person? जब लाइफ में कुछ भी होता है, गुड बैड कंफ्यूजिंग स्कैरी हैप्पी, सबसे पहले किसका नाम माइंड में आपके आता है? वो आपकी मॉम हो सकती है, डैड हो सकते हैं, कजन, फ्रेंड, सिबलिंग, कलीग, कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा इंसान जिसको दुनिया शायद नॉर्मल ऐसा ही बोले कि इसके साथ कैसे. बट आपके लिए वो तो एकदम होम वाली फीलिंग लाते हैं. बट हमें ये जानना है कि कौन है वो. विदाउट थिंकिंग द फर्स्ट नेम जो माइंड में आता है, That is your answer. But give it a thought aur hame likh dijiye 915-8963 par that who is your go-to person. Aur haan, of course, ye hai Dear Masti Dil Se, aapka apna safe space. To please beparwaah hoke jo bhi aap hame likh kar bhejenge, jo bhi dil se niklega, wo yahi rahega. Aap bas apna jo hai dil kehte hai na, udhel ke daliye. हमारा प्रॉमिस है, वी विल लिसन विद केयर, विद काइंडनेस एंड पूरे दिल से. स्टे ट्यून्ड.

हर जनरेशन में ना एक वो बंदी होती है जो एक दिन स्टैंड लेती है और पूरा गेम ही चेंज करके रख देती है। वो एक रूल तोड़ देती है जो शायद बहुत पहले टूट जाना चाहिए था, और फिर वही एक कदम न जाने कितनी लड़कियों के लिए एक नया रास्ता बना देती है। Why am I talking about this? Let me tell you why. Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. And अब वक्त है अगली चिट्ठी का। Dear Masti, recently घर में बहुत बड़ा fight हुआ, involving my in-laws, me and my husband. मेरे father-in-law ने बहुत loud tone में बात की, और मेरी mother-in-law suddenly उनके against खड़ी हो गई। उन्होंने clearly बोला, that is not okay. You cannot talk to me like that. मैं शॉक थी, ऑकवर्ड भी थी, बट सडनली आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हर। लेटर आई वेंट एंड टोल्ड हर दैट कि मैं फक्र है मुझे आप पे। डिड आई डू द राइट थिंग? डियर लिसनर, आई थिंक यू एब्सोल्युटली डिड द राइट थिंग, और मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ ने भी बिल्कुल सही किया। देखिए, हम सब एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहाँ पे एक लाउड टोन जो है या फिर अथॉरिटी के उस पे, सीनियोरिटी के उस पे हर्टफुल बिहेवियर को कभी कभी काफी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अरे गुस्से में बोल दिया, ऐसा तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर चीज नॉर्मल नहीं होती सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सालों से होती हुई आ रही है। वी जस्ट कैन नॉट कीप ऑन डूइंग इट। और इसीलिए मैं कह रही थी कि हर जनरेशन में देयर इज दैट वन वुमन, ओके, जो एक दिन शी टेक्स अ स्टैंड एंड सेज दैट बस अब और नहीं। और मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ ने वही किया है। शायद उन्होंने पहले कभी स्टैंड नहीं लिया, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, शायद किसी को भी नहीं पता हो सिवाय उनके। बट इमेजिन कितना कुछ फील किया होगा उन्होंने, कितना कुछ देखा होगा, टू फाइनली रीच अ पॉइंट वेयर शी रियलाइज दैट इफ आई डोंट स्पीक नाउ देन हू विल, एंड देन ऑफ कोर्स शी डिड। और जो आपने किया वो भी इक्वली ब्यूटीफुल था माय डियर गर्ल। ऑकवर्ड फील करने के बाद भी आप उनके पास गए एंड बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। ऑनेस्टली मुझे लगता है उन्हें वो एक्नॉलेजमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू इन सच अ टेंस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन स्पेशली इन द सेम फैमिली, दैट इज सच अ पावरफुल थिंग। क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि जैसे शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में होती है, राइट? तो फिर रिस्पेक्ट, सपोर्ट और इमोशनल सेफ्टी भी पूरी फैमिली में फील होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, एंड ऑनेस्टली आई फील प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। स्टे ट्यून्ड।

आप सभी का स्वागत है डियर मस्ती दिल से पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। यस, रेडियो के हम आपके वो वाले दोस्त हैं जो आपके यहाँ पर चिट्ठियां पढ़ते हैं और अपना पर्सपेक्टिव उन चिट्ठियों के ऊपर जो हम सोचते हैं पूरे ट्रांसपेरेंसी और पूरे सिंसियरिटी के साथ जो है आपको बताते हैं। वेल, मैं हूँ अंतरा आपके साथ एंड शायद ये सारी बातें जो भी हम यहाँ पर करते हैं सिचुएशंस की, बाहर से छोटी लगे ना लगे अंदर ही अंदर हमें काफी अफेक्ट कर रही होती हैं। ऑनेस्टली आज के लेटर को जो है सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सीक्रेटली ही सही बट बहुत सारे लोग ऐसा फील करते होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लेटर जो है उसको पढ़ लेते हैं। डियर मस्ती, मेरे ऑफिस में एक कलीग है और मुझे हमेशा लगता है दैट शी कॉपीज एवरीथिंग आई डू। अगर मैं कोई स्पेसिफिक स्टाइल पहनूं, कुछ दिन बाद वो भी वैसे ही ड्रेस करने लगती है। मैं कोई एक्सेसरी लूं तो वो भी, मैं किसी नए कलीग से बॉन्ड करूं तो वो भी उसके साथ चिपकने लगती है। ऑनेस्टली इट इज गेटिंग इरिटेटिंग नाउ। कभी कभी मन करता है उसे बिठा कर बात करूं बट इट फील्स ऑकवर्ड। What do I even say to her? So my dear listener, सबसे पहले तो let me tell you कि शायद आप overthink नहीं कर रहे हो और ये situation actually बहुत common है। कभी कभी life में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो consciously या unconsciously हमसे ना inspired होने लगते हैं और कई बार copying के पीछे jealousy नहीं होता है, admiration भी होता है बट जब वो काफी repeatedly होने लगे तो irritation feel होना भी natural है क्योंकि somewhere you feel कि your individuality जो है उसको वो invade हो रही है। अब देखिए situation में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डोंट लेट इट कंज्यूम योर मेंटल पीस एंड सेकंड, रिएक्शन केयरफुली चूज करना। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो है जाकर बोल दें व्हाई आर यू कॉपिंग मी तो चांसेस है सामने वाला डिफेंसिव हो जाए या सिचुएशन ऑकवर्ड या वियर्ड बन जाए ऑफिस में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कभी कभी लाइफ में बेस्ट रिस्पॉन्स होता है टू बिकम इवन मोर योर सेल्फ क्योंकि पीपल कैन कॉपी योर क्लोथ्स, आपका स्टाइल, आपकी एक्सेसरीज बट दे कैन नेवर फुल्ली कॉपी योर एनर्जी। एंड सच कहूँ जो लोग खुद को जेन्युइनली जानते हैं वो कंपैरिजन और कॉपिंग में अटकते ही नहीं है, वो नेचुरली अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, अगर कभी आपको जेन्युइनली लगे कि दिस इज क्रॉसिंग योर पर्सनल कंफर्ट लाइन देन मे बी कामली कैजुअली बात कर सकते हैं, नॉट लाइक काइंड ऑफ अक्यूजिंग दैट पर्सन, बस लाइटली। बट टिल देन डोंट श्रिंक योर सेल्फ, डोंट स्टॉप शाइनिंग एंड डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी को तो डल बिल्कुल भी मत करिए सिर्फ इसलिए क्योंकि someone else is following the vibe. Take it as you clearly have a good taste, right? Hope this helps. जलवा आपका है and it is purely yours. ये हमेशा याद रखिएगा. Stay tuned to Dear Masti, दिल से.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या जी?
6: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाजी, क्या बात जी।
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
7: जोश में रहो।
1: पता है आपको, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अकेले वीडियोस नहीं बनाते, ना ना ना ना ना, अपने पूरे परिवार के साथ वीडियोस बना रहे होते हैं। मतलब इतने आउटस्पोकन घर वाले मिलते कहाँ हैं, हमारे वाले तो मुंह पर मना कर देते हैं, सुनो ये सब वीडियो शीडियो में हम नहीं आते, ना ना ना ना। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। सो रिश्ते जो हैं, जैसे हमें वीडियोस में दिखाई देते हैं उतने खूबसूरत नहीं होते, या फिर वीडियोस में जितने बुरे दिखाए जाते हैं उतने बुरे भी नहीं होते यार। एनीवेज, इन वीडियोस की वजह से हम जरूर बहकते जा रहे हैं और हम परफेक्शन ढूंढने निकल गए हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और मेरे हाथों में जो खत है उसमें रिश्तों से जुड़ा हुआ कौन सा अगला सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे खुद के घर वाले तब याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, वरना मेरी फीलिंग्स की, मेरी चॉइसेस की, मेरी प्रॉब्लम्स की किसी को कोई फिक्र नहीं। मैं इमोशनली बहुत ही अकेला फील करता हूँ। मतलब मेरे घर वाले ही सिर्फ ऐसे हैं या औरों के भी होते हैं? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि किसने बोला कि ऐसे घर वाले नहीं होते हैं? आपको पता है, आज भी मैं अपने घर के बड़ों के सामने ये नहीं बता सकती कि मुझे क्या पसंद है खाने में और क्या नहीं। वो जो लेकर आए हैं ना बाहर से खरीद कर, बस वही मेरी पहली चॉइस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट करने का तरीका होता है, हाँ, एंड ये तरीका बहुत ही पुराना है। अगर आप अपने खुद के कुछ रूल्स बना लेंगे, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने घर वालों को भी डील करने लगेंगे, तो शायद रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। एंड पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे घर वाले ही होते हैं जो हमारा एक्चुअली में अच्छा चाह रहे होते हैं, ओके? मतलब आपके सुख में, आपके दुख में वो खड़े रहेंगे। बस हाँ, उन्हें बहुत ज्यादा आपसे बातें करने की आदत नहीं है एज अ फ्रेंड, या फिर आपने कभी कोशिश नहीं करी उन्हें अपने मन का हाल बताने की, हाँ? तो जितना आप वक्त बाहर दोस्तों के साथ गुजारते हैं ये सोचकर कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, हाँ, उससे आधा वक्त अगर आप अपने घर पे घर वालों के बीच बैठकर डाइनिंग टेबल पर, टेलीविजन के सामने या बालकनीज में बैठकर स्पेंड करोगे तो शायद ये बॉन्ड और भी खूबसूरत बन सकता है। ट्राई दैट वंस एंड लेट मी नो यार। लाल कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: एक बार पता है क्या हुआ, मैंने किसी को बहुत इंपॉर्टेंट वजह से कॉल किया, मतलब बहुत से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट वजह से, और उसकी कॉल वेटिंग पे जाती रही। मतलब उसको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरी कॉल आ रही है, मेरी कॉल आ रही है, बार बार आ रही है। फिर मैंने कॉल करना बंद कर दिया। अब मैं सामने वाले के रिवर्ट बैक का इंतजार करती रही। एक घंटा निकल गया, दो घंटा निकल गया, तीन घंटा निकल गया। फिर मैंने दोबारा कॉल बैक किया और मैंने सबसे पहला सवाल ये किया कि जब तुम्हारे सेलफोन पे कॉल वेटिंग का नोटिफिकेशन आ गया था, तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? मुझे बहुत जरूरी काम था, मैं फालतू कॉल नहीं कर रही थी। तो सामने वाले ने बड़े अजीब अजीब से बहाने बनाए कि नहीं नहीं मेरे स्क्रीन पे तो कुछ दिखता ही नहीं है, और कॉल वेटिंग जैसी चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता या देती, समथिंग लाइक दैट। और ये सब छोड़ो ना, तुम बताओ क्या काम था जिसके लिए तुम बार बार कॉल कर रही थी, चलो जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ही ये दो लाइंस मेरे सामने आई ना, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक उसे कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि समटाइम्स लोगों के बहुत बड़े एक्शंस नहीं, छोटे छोटे एक्शंस ही बता देते हैं कि उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए आप जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मन से मानते हैं, उनकी कॉल्स, उनके मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली जब आपसे वो बहुत दूर रहते हैं। बस कॉल उठाओ, 5 सेकंड में बोल दो कि रात में कॉल करता हूँ, कल कॉल करता हूँ, मैसेज में बात कर लो, थोड़ा बिजी हूँ। सिर्फ इतना भी बोल दोगे ना, तो आपको शायद आगे जाकर रिग्रेट फील नहीं होगा कि कोई हमसे हर्ट हो सकता है, हमारे एक्शन से हर्ट हो सकता है। चलिए, ऐसी छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में ऑप्ट कीजिए, और प्लीज कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो।
1: दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूं, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूं।
0: बिल्कुल इसी गाने की तरह अपने और दूसरों के इमोशंस को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए। डियर मस्ती दिल से शो पर आरजे नुपुर।

बढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो आइए आज का ये हमारा जो शो है, काफी पावरफुल सा शो है, फ्रेंकली काफी दिल को टच कर जाता है, दिमाग को टोटली एग्जॉस्ट कर जाता है। बट एक खुशी ज़रूर होती है कि इस शो के ज़रिए आप सभी की चिट्ठियाँ जो हम तक आती हैं या आपकी फीलिंग्स हमारे साथ एक्सप्रेस होती हैं, वो सभी के बारे में हम बात कर पाते हैं और शायद आपको एक डायरेक्शन भी दे पाते हैं। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से। You know, every time we do Dear Masti Dil Se, I realize something very, very powerful. Behind every smiling face, every busy routine, every I am fine, there is often a story nobody knows about. पिछले कुछ एपिसोड्स में आपकी चिट्ठियाँ, जी हाँ, उनमें हमने बात करी है फैमिली की टेंशन्स की, लोनलीनेस की, फाइनेंशियल स्ट्रेस की, ऑफिस पॉलिटिक्स

And that is what Dear Masti Say is, Dil Se, is becoming. A safe little space on Radio Masti 24/7, jahan real people talk about real emotions and real struggles. So if there is something on your mind, something you've never spoken about, a relationship issue, family pressure, mental health struggle hai, heartbreak, confusion, guilt, loneliness, ya simply a life situation where you don't know what to do next, hame likhiye. info@radiomasti.com.sg, listener@radiomasti.com.sg या फिर 9151896 3. आपको टोटली अनोनिमस रखा जाएगा, नो जजमेंट, नो फिल्टर्स, जस्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम द हार्ट. क्योंकि कभी कभी आपकी कहानी मे नॉट ओनली हेल्प यू, इट मे हेल्प समवन एल्स लिसनिंग साइलेंटली एंड फीलिंग अलोन. सेंड योर लेटर्स, वॉइस नोट्स या फिर ऑफकोर्स व्हाट्सएप रेडियो मस्ती 24/7 को, एंड मे बी टुगेदर वी कैन ट्राई एंड फाइंड अ लिटिल क्लैरिटी, कम्फर्ट एंड कनेक्शन. व्हाट्स इट, ये है डियर मस्ती दिल से, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 पर, जहां हर इमोशन हैज अ प्लेस एंड एवरी स्टोरी मैटर्स. जी हाँ, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान कई बार आपको बेहतर समझ लेता है औरों से जो आपके आसपास होते हैं. डोंट यू फील दैट. चलिए इसी के साथ आई एम गोइंग टू लीव यू विद द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से गुडबाय ऑन अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे इवनिंग. दिस इज रेणुका विद यू साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ माय फेलो जॉक्स. डियर मस्ती दिल से.

सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कर रहा हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं कहता हूं मेरे सवाल के जवाब में आपको कहना चाहिए सारू छे, और मैं कहूंगा अखा सिंगापुर मारू छे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो आज हमारा कारवां गुजरेगा 1980 के सुपरहिट साल से, सुपरहिट फिल्मों की हम बातें करेंगे, उनकी कहानियां सुनाएंगे, उनके गाने आप तक पहुंचाएंगे। सिंगापुर, ये वो साल था 1980 का जब CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क चैनल की शुरुआत हुई। यही वो साल था जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और भी बहुत कुछ हुआ इस साल। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इन सारी फिल्मों के बीच में एक फिल्म आई थी जिसका नाम भी खूबसूरत था। ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी और NN सिप्पी ने इसे प्रोड्यूस किया। फिल्म में रेखा लीड रोल में थी, खूबसूरत थी, साथ में उनके साथ थे राकेश रोशन, दीना पाठक और अशोक कुमार। हालांकि देखा जाए तो सभी लीड रोल में थे। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, जैसे कि रशीदा की हर फिल्में होती हैं,

इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और रेखा ने अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। हालांकि उसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म जुदाई के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। कहानी मजेदार है जिसमें अशोक कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। दीना पाठक जो अशोक कुमार की पत्नी है घर में उनकी ही चलती है। बहुत सारे कायदे कानून लगा रखे उन्होंने, यहाँ तक कि अशोक कुमार की भी नहीं चलती। अपने बेटों के लिए बीवियां भी दीना पाठक ही चुनती हैं। तो इनके बड़े बेटे की शादी होती है साहब डेविड की बेटी अंजू से। अंजू कौन है? मंजू की बहन। मंजू कौन है? रेखा। रेखा की बड़ी दीदी है अंजू। तो उनकी शादी इस घर में हो जाती है साहब, और दीदी के साथ कुछ दिन बिताने के लिए वो दीदी के ससुराल आ जाती हैं। यहाँ मंजू यानी रेखा का फ्रैंक बिहेवियर दीना पाठक यानी निर्मला को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी घर वाले उससे खुश रहते हैं। इसी बीच राकेश रोशन और रेखा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब निर्मला बाहर चली जाती है तो रेखा उनका मजाक बनाती, मतलब मिमिक्री करती है, लेकिन संयोगवश निर्मला वापस आ जाती है। लेकिन जैसा कि हर हिंदी फिल्म में होता है हैप्पी एंडिंग, यहाँ भी वही होता है। गाने बेहद कमाल हैं जिनको कंपोज किया है पंचम दा ने। वो गाना याद है आपको? सुन सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। जब अंजू के लिए रिश्ता आता है दीना पाठक जी के घर से, तब मंजू ये गाना गाती हैं। और एक गाना जब वो अंजू के ससुराल चली जाती हैं, पिया बावरी और सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब बड़ा मजेदार गाना है। फिल्म के डायलॉग्स और गीतों के बोल गुलजार साहब ने लिखे। गुलजार साहब जिन्होंने रिशिदा की लगभग हर फिल्म में काम किया। सुन सुन सुन सिंगापुर आपके लिए एक गाना लाया हूँ। आइए सुन लेते हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। यादों का कारवां शुरू तो करें भाई, ये गाने इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए ने सुनकर वापस आइए, मैं इस साल रिलीज हुई दूसरी फिल्मों से भी आपको मिलवाऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

घटित था, लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था, खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और आज हमारा ये कारवां गुजर रहा है 1980 के साल से 1980 का साल भाई ये साल तो आपकी बहुत सारी यादों से जुड़ा हुआ होगा क्या किया था इस साल कहाँ थे कौन कौन सी फिल्में देखी क्या करते थे कितने बरस के थे आप तमाम वो बातें हैं जो आप अब तक किसी से कह नहीं पाए या कहीं होंगी लेकिन उसे हमें भी तो बताइए शेयर कर सकें तो प्लीज हाँ हमारे फेसबुक पेज पर आइए 1980 की बेहतरीन यादें हमसे शेयर कीजिए फिलहाल मैं उस साल रिलीज हुई फिल्मों की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जैसे कि इस साल की अगली फिल्म जो मेरे ध्यान में आ रही है वो मेरी भी फेवरेट है इट वॉज सुपर हिट मूवी फिल्म का नाम है कुर्बानी फिरोज खान साहब के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने खूब कमाई की साहब फिरोज खान साहब ने इससे पहले धर्मात्मा बनाई थी और वो भी ऐसे ही हिट हुई थी खूब कमाई की उसने भी फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे फिरोज खान खुद इसमें लीड रोल में थे इनके अलावा विनोद खन्ना साहब थे इसमें फीमेल लीड रोल में जीनत अमान थी शक्ति कपूर और अमरीश पुरी नेगेटिव रोल में थे और वहीं अमजद खान जगदीप विजू खोटे अरुणा ईरानी कादर खान भी इस फिल्म में थे और कमाल का काम था मतलब अमजद खान साहब को मैंने पहली बार इस तरह का काम करते हुए देखा था मैं फैन हो गया था उनका अच्छा कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फिरोज खान साहब कुर्बानी के लिए अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी तो उन्होंने विनोद खन्ना को ले लिया क्योंकि फिरोज खान इतना वेट करने के मूड में थे नहीं तो उन्होंने विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्म शुरू कर दी फिल्म की स्टोरी कमाल की है जिसमें फिरोज खान यानी राकेश सर्कस में बाइक स्टंटमैन है लेकिन बाद में वो एक चोर बन जाते हैं शीला यानी जीनत अमान के साथ इनका अफेयर है लेकिन ये बात ये जीनत को बताना नहीं चाहते कि ये एक चोर है अमरीश पुरी जिनका नाम है राका इस फिल्म में वो एक क्राइम बॉस हैं और विनोद खन्ना उनके ग्रुप में काम करते हैं लेकिन वो इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी दोनों भाई बहन हैं जो राका से बदला लेना चाहते हैं राजेश को बहरहाल 2 साल की जेल हो जाती है वहीं विनोद खन्ना की मुलाकात जीनत अमान से हो जाती है यानी फिर ये लव ट्रायंगल बन जाता है जेल से छूटने के बाद तीनों मिल जाते हैं मतलब विनोद फिरोज और जीनत अमान खैर एक वक्त ऐसा भी आता है फिल्म में जो कि आना लाजमी था कि इन सब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वरना फिल्म की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी भाई पहले कहानी को उलझाया जाता है फिर सुलझाया जाता है और आपके 3 घंटे यूं हवा में निकल जाते हैं मतलब तभी तो आपको मजा आता है लबुलवाब ये कि हैप्पी एंडिंग है जी मतलब कुल मिलाकर एंड में सब ठीक हो जाता है फिल्म देखने लायक है और म्यूजिकली हिट है ये फिल्म फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है फिल्म का एक गाना जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए इसे बिट्टू ने कंपोज किया है और बिट्टू इंडिया बॉर्न इंग्लिश कंपोजर है इसे गाया है पाकिस्तानी पॉप स्टार नाजिया हसन ने एक कवाली भी है कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी इसे फारूक कैसर ने लिखा है और कंपोज किया है कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने बाकी गाने भी इन्हीं ने कंपोज किए हैं और इन 2 गानों के अलावा बाकी सब गाने इंदीवर साहब ने लिखे हैं जिसमें से 2 मेरे फेवरेट हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे और क्या देखते हो सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी फिलहाल मैं आपकी चाह समझ गया हूँ आपको इस फिल्म के बेहतरीन नगमे सुनने हैं मैं बीच में से हट जाता हूँ कंप्यूटर जी कम से कम 2 गाने तो बनते हैं आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए सिंगापुर आप यहीं मेरी जिंदगी में बने रहिएगा मैं अगली फिल्म का जिक्र करूंगा इन गानों के बाद स्टे कनेक्टेड

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का गारवा ओनली ऑन रेडियो मिस 24/7 लाइव। मेरा नाम है समर और आज मैं 1980 की फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ। 1980 से दोस्तों 8 फिल्में बनना भी शुरू हो गई थी। हालांकि इंडिया में पैरेलल सिनेमा या जिसे हम न्यू वेव सिनेमा कहते हैं काफी पहले से चल रहा था, लेकिन इस वक्त 8 फिल्मों का दौर जो था अब उसको पहचान मिलने लग गई थी। और हालांकि फिल्में पैसा तो नहीं कमाती थी लेकिन सरकार की मदद जरूर मिल जाती थी तो फाइनेंस हो जाया करता था और ये अलग तरह का सिनेमा था। लोग अब इसे देखने लगे थे, क्रिटिक्स अब इस पर लिखने लगे थे, तो कुल मिलाकर इसकी चर्चा होने लगी थी। तो अब 8 फिल्मों का जिक्र मैं जरूर करूंगा अपने शो में, लेकिन आगे करूंगा। अभी तो मैं बात कर लेता हूं इसी साल की। भाई देखिए, इस साल तक एक्शन के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्में बन रही थी और उस टाइम के बेहतरीन डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब उस दशक में कई हिट दे चुके थे जिनमें सबसे पॉपुलर थी शोले। इस साल उनकी फिल्म आई शान। रमेश सिप्पी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर के साथ साथ परफेक्शनिस्ट भी हैं। फिल्म में सुनील दत्त हैं, अमिताभ बच्चन हैं, साथ में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वॉकर और यूनुस परवेज भी हैं। और फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में एक बेहतरीन रोल आपको देखने को मिलेगा और वो है शाकाल का, जो कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है। कमाल का काम किया है साहब, जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने और इस बेहतरीन फिल्म को लिखा है सुपरहिट राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने एक बार फिर से। और अगर किसी फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा है तो मान लीजिए डायलॉग्स तो उसके कमाल के होंगे ही। शाकाल का एक डायलॉग बड़ा मजेदार है जब वो अपने पालतू मगरमच्छ के लिए बोलता है,
1: अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है।
0: फिल्म में सुनील दत्त साहब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उनके दो भाई अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक नंबर के लफंगे, मतलब लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं जी, धोखेबाज 420। बिंदिया गोस्वामी और जॉनी वॉकर भी लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं, ठगी करते हैं जी कुल मिलाकर। इन दोनों की मुलाकात अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब से इसी चक्कर में हो जाती है जब जॉनी वॉकर और बिंदिया गोस्वामी इन दोनों को लूट लेते हैं। खैर, फिल्म की स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कॉमेडी और डायलॉगबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर कहानी शुरू होती है जब शाकाल के आदमी सुनील दत्त को मार देते हैं और फिर उसका बदला लेने के लिए दोनों भाई बुरा काम करना छोड़ देते हैं। स्टोरी बहुत ही मजेदार है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है जिसे SM अनवर ने शूट किया है। फिल्म में शाकाल जहां रहता है वो एक आइलैंड है जो ब्रिटिश चैनल के बीच में। SM अनवर ने शानदार तरीके से यहां के सीन्स को शूट किया है हेलीकॉप्टर से, आप देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। म्यूजिक आरडी बर्मन साहब का और गाने लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। सारे के सारे गाने हिट हैं, आप बताइए कौन सा सुनेंगे। यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, या फिर जानू मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, या फिर वो प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। कंप्यूटर जी कंफ्यूज हो गए, आप हमारा कंफ्यूजन को दूर करो, कोई दो गाने तो सुनवा दीजिए। हाँ, बहुत ही हिट फिल्म थी, हिट म्यूजिक था इसका, दो गाने तो बनते हैं क्यों सिंगापुर। तो आपके लिए आ रहे हैं ये गाने, शान से सुनिए रेडियो मंजी 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657.

हेलो नमस्कार, वेलकम बैक सिंगापुर। और हमारा दोस्ताना यूं ही बना रहेगा, भी कभी नहीं टूटेगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम है समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर एक बार फिर लौट आया हूँ लेकर यादों का कारवां। और आज हमारा कारवां कहाँ से गुजर रहा है? यू गेस्ड इट राइट, 1980 के साल से। काय का गैस, आप सुन तो रहे हैं, आपको पता तो है, फिर भी चलिए मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। 1980 से गुजर रहा है लेकिन इसके लिए कोई प्राइस नहीं आपने बताया। तो चलिए अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1980 से जुड़ी तो बहुत सारी यादें आपकी हमारी, तो आइए शेयर करते हैं ना। आइए आइए फेसबुक पेज पर आइए और वहां दिल खोलकर अपने दिल की बातें लिखिए जो 1980 के साल से जुड़ी हो। जैसे कि उस वक्त आप कहां थे, कितने बरस के थे, फिल्में देखना शुरू किया था नहीं किया था, आपके फेवरेट एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन थी, कौन सी फिल्म आपको उस साल की सबसे अच्छी लगी, कुछ भी बता सकते हैं, या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुना सकते हैं आप हमें, मतलब लिख कर बता सकते हैं, सुना मैं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। हमारी अगली फिल्म है 1980 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे बड़ी हिट फिल्म, सलीम जावेद की कलम से निकली हुई एक और ब्लॉकबस्टर कहानी, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने, और फिल्म थी राज खोसला की आखिरी बड़ी हिट, जिसे प्रोड्यूस किया था यश जौहर साहब ने। फिल्म का नाम अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, दोस्ताना। इसमें भी एक बार फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, प्राण साहब, जगदीश राज, हेलन, अमरीश पुरी थे। फिल्म की स्टोरी में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जिगरी दोस्त हैं, उन्हीं की कहानी है दोस्ताना। वो होते ना एक ही थाली में खाने वाले, फिर आती है जीनत अमान और दोनों को जीनत अमान से हो जाता है प्यार, लेकिन जीनत चाहती है अमिताभ को। शत्रुघ्न सिन्हा भी उनसे प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा प्यार करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा लॉयर है इस फिल्म में और अमिताभ पुलिस इंस्पेक्टर। अमिताभ अपराधियों को पकड़कर जेल में डालते हैं और रवि यानी शत्रुघ्न सिन्हा उनकी बेल करवा देते हैं, और वो डागा यानी प्रेम चोपड़ा से मिले हुए हैं। खैर एक दिन रवि विजय से यानी अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि वो शीतल यानी जीनत अमान से प्यार करते हैं। विजय दोस्ती के लिए सेक्रीफाइस कर देता है लेकिन बाद में डागा दोनों में दरार डलवा देता है एंड फिर दोनों दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं। और फिर क्या होता है भाई, देखिए उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी, देख लीजिएगा जब भी मौका मिले, बहुत अच्छी फिल्म है। और गानों के बारे में तो क्या कहें आपको, टाइटल ट्रैक बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये तो कमाल का था ही। इसके अलावा जीनत अमान और अमिताभ बच्चन साहब का एक रोमांटिक ट्रैक है जो मुझे बहुत पसंद है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और भी गाने वो भी कमाल के हैं, एक वो कितना आसान है कहना भूल जाओ, कितना मुश्किल है मगर भूल जाना, आई लाइक इट। इन गानों को लिखा और बनाया है हिट स्टार टीम आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ने। बाद में इस फिल्म के कई रीमेक भी बने लेकिन भैया ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो अब कंप्यूटर जी दो गाने बनते हैं दोस्ताना से, बाकी आपकी मर्जी। सिंगर मैंने आपकी तरफ से सिफारिश कर दी है, शायद कंप्यूटर जी मान जाए। हेलो हेलो प्लीज दो गाने प्लीज। रेडियो मजी 24/7 लाइव बराब है समर के साथ। रेडियो मजी 24/7 लाइव को आप सिंगापुर आप सुन सकते हैं 24 घंटे सातों दिन, और ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो है। तो कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
6: यादों का कारवां में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो. तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मैं 1980 के साल में बी आर चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन और उनके बेटे रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी थी द बर्निंग ट्रेन, उसका आप मैं जिक्र करने जा रहा हूं. ये फिल्म 1975 में आई जैपनीज डिजास्टर मूवी द बुलेट ट्रेन का रीमेक थी. फिल्म का बजट बड़ा होने के साथ साथ फिल्म की स्टार कास्ट और म्यूजिक भी बहुत बड़ा था और शानदार भी था. अब जरा स्टार कास्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए इसके बारे में. विनोद खन्ना थे इसमें, धर्मेंद्र, डैनी, परवीन भाभी, हेमा मालिनी, मदनपुरी, जितेंद्र, इंद्राणी मुखर्जी, रंजीत, और ये सब तो मुख्य किरदार में थे. सिमी ग्रेवाल का नाम लिया कि नहीं मैंने? अरे भैया सिमी ग्रेवाल भी थी इसमें भाई, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, सबके नाम मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी. धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और डैनी ये तीनों बचपन के दोस्त हैं. डैनी को गुस्सा जल्दी आता है और वो खासकर विनोद खन्ना की सक्सेस से जलते हैं. तीनों का सपना है सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बनाना. तीनों एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और विनोद खन्ना का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है. डैनी के मन में उनके लिए जेलेसी और बढ़ जाती है. इसी बीच धर्मेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करने लग जाते हैं, विनोद खन्ना जीनत अमान से, लेकिन डैनी भी जीनत अमान को पसंद करते हैं. यही तो लोचा हो जाता भाई, लेकिन जीनत विनोद से शादी करना चाहती है और एक बच्चा भी हो जाता उनके. ये सब डैनी के मन में विनोद के लिए और भी ज्यादा दुश्मनी पैदा कर देते हैं. वेल अब आप समझ गए होंगे कि फिल्म का विलेन कौन है. खैर साहब, ट्रेन शुरू होती है दिल्ली और मुंबई के बीच और इनॉग्रेशन के दिन ही ट्रेन में आग लग जाती है. अब ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये सब आप फिल्म देखकर ही जान पाएंगे. लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन में लगी आग को कैसे बुझाया गया, क्योंकि ट्रेन के ब्रेक भी फेल कर दिए गए हैं, ये अपने आप में देखने लायक है. ये फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म है. म्यूजिक इसमें आर डी बर्मन साहब का है और गाने लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने. वेल अभी आप इस फिल्म के ये गाने सुनिए. हालांकि मुझे इस फिल्म का वो जो कवाली है ना, पल दो पल का साथ हमारा, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और आपको भी पसंद आएगा. सुनेंगे तो आइए पल दो पल का साथ हमारा, और इन पल दो पलों के बाद हम यही मिलेंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. आप इन समर के साथ बने रहिए.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। देखिए सिंगापुर, आज हम यादों के कारवां में 1980 का जिक्र कर रहे हैं। 1980, मुझे मालूम है अंतरा मुझे वहां से आंखें दिखा रही हैं, दिखता नहीं है रेडियो पर, हमेशा बोलते देखिए देखिए। हाँ, अरे ये मन की बात है अंतरा, तुम नहीं समझोगी। जब हम कहते हैं देखिए तो वो हमारे मन के अंदर झांक कर देख लेते हैं। हाँ, समझो, अब मुस्कुरा रही हैं। तो अब मैं जिस अगली फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूँ ना, उसका नाम है इंसाफ का तराजू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1976 की फिल्म लिपस्टिक पर ये फिल्म बेस्ड थी और इस फिल्म में राज बब्बर थे खतरनाक रोल में, साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी थी, जिनत अमान थी, श्रीराम लागू थे, दीपक पराशर थे, सिमी ग्रेवाल और धर्मेंद्र इसमें गेस्ट अपीयरेंस में थे। फिल्म की स्टोरी बड़ी कमाल की है और इसी की वजह से ये फिल्म हिट हुई। अडल्ट फिल्म थी ये भी। इसमें राज बब्बर साहब जैसे मजबूत एक्टर थे। फिल्म में राज बब्बर एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनकी मुलाकात मॉडल जीनत अमान से होती है, बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है और राज बब्बर साहब जीनत अमान का फोटोशूट करवाते हैं और एक दिन उन्हें देखने के लिए उनके घर जाते हैं, मतलब जीनत अमान के घर। लेकिन दूसरे दिन राज बब्बर के घर पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है, मतलब जीनत अमान उन पर रेप का चार्ज लगाती है। खैर, राज बब्बर साहब एक लॉयर करते हैं, श्रीराम लागू उनके लॉयर है, वो उनका केस लड़ते हैं। फिल्म की कहानी भी यही है कि इंसाफ किसे मिलता है, लेकिन बी आर चोपड़ा साहब ने इस कहानी को इतने कसे हुए अंदाज में दिखाया कि आप फिल्म से बंधे रहते हैं। फिल्म में चार गाने हैं जिनको रविंद्र जैन साहब ने कंपोज किया है, गाने लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को, जो इस फिल्म को देख ही नहीं पाई।

क्योंकि ये फिल्म ए सर्टिफाइड थी और पद्मिनी कुलाबुरे की उम्र उस वक्त महज 16 साल की थी। बेस्ट एडिटिंग के लिए B.S. माने को अवार्ड मिला और बेस्ट डायलॉग्स के लिए शब्द कुमार साहब को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। खैर अभी इस फिल्म के ये गाने सुन लेते हैं, तब तक आप यहीं रहिएगा, मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: गाली देती है साली,
1: साली दे सकती है गाली।
0: लड़का तो है देखा,
1: अच्छा?
0: लंगड़ाता है थोड़ा, और बात करे तो हक हक हक लाता है।

वेलकम बैक। कहा था ना यूं गया और यूं आया। मेरा नाम है समर, एक बार फिर से लौट आया हूँ यादों का कारवां के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवां गुजर रहा है सिंगापुर 1980 के ईयर से। चलिए अब इस कारवां की अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं बगैर टाइम खोए। आशा है उस फिल्म का नाम। जाने माने प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म में थे जितेंद्र, रीना रॉय और तल्लूरी रामेश्वरी, टी रामेश्वरी या रामेश्वरी के नाम सुने आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। ये तीनों लीड रोल में थे इस फिल्म में। साथ में थे गिरीश कनाड जो कि खुद एक बड़े प्ले राइटर हैं और बेहतरीन एक्टर भी हैं। बाद में इस फिल्म का तेलुगु और तमिल भाषा में भी वर्जन बना, रीमेक बना बेसिकली। अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ, इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी हैं। जी हाँ, उन्होंने एक छोटा सा रोल किया इस फिल्म में और ये पहली मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन दिखाई दिए। एक्चुअली जी ओम प्रकाश साहब जो है ना, जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वो ऋतिक रोशन के नाना जी हैं। फिल्म में जितेंद्र एक ट्रक ड्राइवर हैं। एक बार रीना रॉय को लिफ्ट देते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रीना रॉय इन्हें अपना अच्छा दोस्त बना लेती हैं। उधर जितेंद्र रामेश्वरी को पसंद करते हैं और उनसे शादी भी कर लेते हैं। एक दिन जितेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है और सब समझते हैं कि वो मर गए। वहीं जितेंद्र की माँ प्रेग्नेंट रामेश्वरी को कहती है कि तुम तुम्हारे घर जाओ। जब रामेश्वरी अपने घर पहुंचती है तो उनके पिता की मौत हो जाती है। परेशान होकर रामेश्वरी एक नदी में कूद जाती है, लेकिन लोग उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन देखिए फिल्म है, हीरो कैसे मर जाएगा इतनी जल्दी, उस वक्त तो नहीं मरता था कम से कम। जितेंद्र वापस लौटते हैं तो उनकी माँ कहती है कि तेरी बीवी तो मर गई। इधर रीना रॉय उसे फिर मिल जाती हैं एंड परेशान जितेंद्र को वो सहारा दे देती हैं। दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लग जाते हैं एंड वो शादी करने ही लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन गिरीश कर्नाड रामेश्वरी को बताते हैं कि उनका पति जिंदा है और वो दूसरी शादी कर रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कहानी किस ओर जाती है। फिल्म में एक गाना लास्ट में आता है जो 1980 की बिना का गीतमाला में नंबर 4 पर था। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। कमाल का गाना। बाकी के 5 गाने भी हिट हैं। हिट स्टार जोड़ी आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक। तो अभी तो मैं आपको ये वाला गाना सुनाने वाला हूँ, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बड़ा मजेदार गाना है, मेरा सुनने का मन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर सुने, क्योंकि जो मेरे मन में मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे और जो आपके मन में 1980 से जुड़ी यादों के जो किस्से हैं वो हमसे शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। एक दूसरे से बांटेंगे, सबको बताएंगे आप क्या करते थे उस वक्त, क्या करते थे बाल मसाजना 1980 में, हमें आकर बताइए हमारे फेसबुक पेज पर। आपसे मिलूंगा इन गानों के बाद। रेडियो मसी 24/7 लाइव आपने ज्वाइन किया हुआ है। कीप एंजॉयिंग।

वेलकम बैक, यादों के कारवां आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मेरा नाम है समर और आज हमारा कारवां कहां से गुजर रहा है 1980 के साल से, और इसी साल की कुछ सुपरहिट फिल्मों की हमने बात की, अभी कुछ और बची हैं। अब जो फिल्म मेरे जहन में आ रही है वो है राम बलराम। दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म और टीटू ने इसे प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म सुपर हिट थी। अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र की एक साथ ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों शोले कर चुके थे और चुपके चुपके में भी नजर आए थे। धर्मेंद्र इसमें राम है और अमिताभ बलराम। अजीत प्रेम चोपड़ा और अमजद खान इसमें विलेन की भूमिका में। फिल्म की स्टोरी दो भाइयों की है जो बड़े आराम से अपने माँ बाप के पास रहते हैं, लेकिन इनका जो चचा है ना, चचा, वो इनके पिताजी का मर्डर कर देता है। बाद में वो खुद उन दोनों बच्चों को कहता है कि वो अब खुद दोनों का ख्याल रखेगा, तो बलराम को भेज देता है वो पढ़ने, जहां अमिताभ बच्चन बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनते हैं एंड धर्मेंद्र को वो अपने साथ रखता है और उस पर अत्याचार भी करता है। मतलब धर्मेंद्र एक मैकेनिक है और वो जो तनख्वाह लाते हैं वो भी वो सारी ले जाता है, मतलब चचा, और बहुत कम उसे खर्चा पानी देता है। वेल, जब अमिताभ बच्चन पुलिस ऑफिसर बनकर वापस आते हैं तो उसके बाद उनका चाचा यानी जगतपाल धर्मेंद्र को बड़े स्मगलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि राम को बलराम बचाएगा। खैर, धीरे धीरे उसका प्लान सफल भी हो जाता है, लेकिन बाद में राम बलराम दोनों खेल खेल जाते हैं। बलराम राम को खुद अमजद खान की स्मगलिंग टीम का मेंबर बना देता है ताकि उनकी खबर उसे मिलती रहे और वो उन्हें अरेस्ट कर सके। बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका एंड बहुत ही कमाल का, बड़ा रोचक है। फिल्म में फीमेल लीड में रेखा है, जीनत अमान है, और इस फिल्म के दो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको आनंद बख्शी साहब ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कंपोज किया है। एक तो वो एक रास्ता आहा आहा, दो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही आहा आहा, और एक वो जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही स्मार्ट लगे, हेड पहने हुए और काउबॉय जैकेट है उनकी, वो कौन सा गाना है, यार की खबर मिल गई गई। वेल, आप इन दो मस्त गानों को सुनिए और वापस लौट कर आइए रेडियो मजी 24/7 लाइव पर। समर कर रहा है आपका इंतजार। आज 1980 की यादें ताजा कर रहा हूं मैं इन फिल्मों के गानों के साथ। स्टे कनेक्टेड।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत, यादों का कारवां। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। सिंगापुर 1980 की सुपरहिट फिल्मों का मैंने जिक्र किया, उन्हीं की कहानी आपको सुना रहा हूँ। इस कारवां में अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा जिसने खूब सारे अवार्ड्स जीते, लेकिन इस फिल्म को बनने के बाद 4 साल लगे रिलीज होने में। वो कहते हैं ना, लेकिन के देर आए दुरुस्त आए। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। फिल्म का नाम, एनी गेसेस? बताइए। छूकर बताइए। जी हाँ, छूना, ये गैस है, स्पर्श है फिल्म का नाम। देखा जाए तो एक आर्ट फिल्म है। फिल्म की स्टोरी बेहद कमाल की है और उस दौर में बन रही फिल्मों से बिल्कुल अलग है। स्टार कास्ट की बात करूं तो नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में एक ब्लाइंड स्कूल के टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल है जो खुद भी देख नहीं सकते। साथ में उनके दोस्त हैं ओम पुरी, शबाना आजमी एक सिंगर हैं जो विधवा हो चुकी हैं। एक दिन गलती से नसीरुद्दीन शाह साहब शबाना आजमी के घर पहुंच जाते जहां वो रियाज कर रही होती। बाद में एक दिन किसी पार्टी में दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है, जहां नसीरुद्दीन शाह साहब उन्हें, यानी शबाना आजमी को, आवाज से पहचान लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती है। नसीर साहब उन्हें अपने स्कूल में म्यूजिक पढ़ाने का प्रपोजल दे देते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। दरअसल सिंगापुर फिल्म का कंटेंट बाकी फिल्मों से अलग था, इसीलिए फिल्म सुपरहिट रही। क्रिटिक्स ने बहुत पसंद की और एक स्पेशल वर्ग था जो फिल्म की बारीकियों को पहचानता था, उन्हें ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। हालांकि कमर्शियली ये फिल्म उतनी हिट नहीं थी। तो कहानी यूं ही चलती रहती है, बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। फिल्म बहुत अच्छी है, देखेंगे तो आपको बहुत टच करेगी। फिल्म का नाम भी टच ही है, स्पर्श है ना। इस फिल्म में अगर म्यूजिक की बात करें तो 4 गाने हैं जिनको कनु रॉय ने कंपोज किया है। फिल्म में 4 गाने सुलक्षणा पंडित ने गाए हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आपको पसंद आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं सई परांजपे, जिन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उन्हें। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह साहब को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर। तो चलिए, इतनी बेहतरीन फिल्म है, अब इसके कुछ गाने सुन लेते हैं, इसकी यादें ताजा हो गई। मैंने ये फिल्म दूरदर्शन पर देखी थी, बहुत पहले आई थी, मैं बहुत छोटा था, बहुत अच्छे से तो मुझे इसकी कहानी याद नहीं है, लेकिन तब मुझे ये फिल्म समझ नहीं आई थी। आई होप कि अब मुझे कभी वक्त मिले और मैं ये फिल्म जरूर देखूं। आपको भी वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। और 1980 से जुड़ी इन बेहतरीन फिल्मों को आपने कब देखा था या नहीं देखा था, ये गाने कब सुने थे, कौन सा गाना आपका फेवरेट है, सब कुछ बताइए हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम है जमर, लौटूंगा थोड़ी देर में यहीं पर। स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव बराबर है जबर के साथ। और आज यादों का कारवां में हमने सैर की 1980 के बेहतरीन साल की। वैसे आपने फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, देखी हैं ऑफ कोर्स, और आपने डुप्लीकेट यानी डबल रोल कैरेक्टर वाली फिल्में भी देखी होंगी, देखी है ना? अरे भाई वही सीता गीता, जुड़वा, हम दोनों, राम और श्याम, दो कलियां, डॉन, अप्पू राजा, डुप्लीकेट वगैरह वगैरह। इनमें कॉमन बात पता है क्या थी? कॉमन बात ये थी कि जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें डबल रोल के किरदार में वही एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं, यानी कि एक ही एक्टर को दो अलग अलग रोल में दिखाया जाता है। लेकिन एक मूवी में गजब का एक्सपेरिमेंट किया गया 1980 में, जो फिल्म आई थी, नाम था उसका कर्ज। जी हाँ, सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी मूवी, जिसमें ऋषि कपूर साहब और टीना मुनीम की जोड़ी थी। रोल था एक्टर के पुनर्जन्म का, लेकिन इसमें उसी एक्टर को रिपीट नहीं करके किसी दूसरे एक्टर को रोल दिया गया। समझ रहे हैं मैं क्या करूं? चलिए फिर से समझिए। इस फिल्म में शुरुआत में ही एक्टर राजकिरण के कैरेक्टर की मौत हो जाती है, या यूं का मर्डर कर दिया जाता है उनका। पर कुछ साल बाद उसका पुनर्जन्म होता है, पर उसकी शक्ल हर फिल्म की तरह हूबहू वैसी नहीं होती, बिल्कुल अलग होती है। अब समझ गए? तो जनाब, एक रोल राजकिरण साहब ने किया, वहीं दूसरा रोल ऋषि कपूर साहब ने किया। लेकिन वाकई कमाल की मूवी थी, पूरा पैसा वसूल जिसे कह सकते ना वो थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, और सॉन्ग्स की तो पूछे ही मत भाई साहब। आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे हैं जो पूरी तरह से यूथ लवर्स इश्कबाजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखे। म्यूजिक कंपोज करके लिरिक्स में जान डाली बेहतरीन संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कुल 6 गाने इस फिल्म में, और सभी के सभी टू गुड है, लाजवाब है, क्या कहने इनके। वैसे कुछ तो आपको भी याद होंगे, एक वो ओम शांति ओ मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना वो दीवानों, मैंने प्यार करके, अब क्या कहूं। एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, आहा क्या बात है। और एक वो तो भैया कल्ट है, एक हसीना थी एक दीवाना।

एक हसीना थी एक दीवाना था, और वो भी तो इसमें, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का। वेल, आपको सारे गाने याद है मुझे मालूम है, लेकिन कंप्यूटर जी दो गाने तो बनते ही है ना जाते जाते, सुनवा दीजिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा सिंगापुर, आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल तो रखेंगे, साथ में अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, उनके साथ अपने आसपास के लोगों का, चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बन के सज जाइएगा, और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आपको लोग याद करें, और एक दिन मैं आपकी कहानी सुनाऊं यहीं पर। चलिए आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे यहीं पर। यह है रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, 24 घंटे 7 दिन आपके साथ, सिंगापुर में हिंदी का एकमात्र बॉलीवुड रेडियो। सुनिए, मजे कीजिए और जोश में रहिए। बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: They are fresh. They are hot.

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: As you say, sunshine.
2: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
1: जहाँ से मैं आया हूँ।
2: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
1: प्यार।
2: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: Listen up, yo. It's Valentine's Day.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: यू नो व्हाट, आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? आ, आ, आ, आ, जो आप सोच रहे हैं ना, उससे तो बहुत अलग चल रहा है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अभी ना शो पर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ना कहीं थोड़े से पागल बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया हमें कहा जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया को एक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, एंजॉय दैट, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये सारी चीज़ें बोल तो दी जा रही है, लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ना वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? और वेपन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि इंडिया में एंटी पॉलिटिक्स को जनरेट करने के लिए, या फिर सारे दुश्मनों को एक करने के लिए कुछ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। स्पेशली उसमें यंगस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो जो एक सिनेरियो होता है ना कि एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ यंगस्टर्स को प्रोवोक करके कहीं पे भी कोई स्ट्राइक करवा दे, कहीं पे भी कुछ गलत करवा दे, तो इसके लिए उनके पास एक पूरी फौज होनी चाहिए। तो चलिए भाई, ये सारे चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, मसी मॉर्निंग शो पर मैं आज इन पर आ तो गई है, लेकिन बहुत सारी बातें कर रही हैं आपका इंतज़ार। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टकाटक जोश में रहो।
2: आज भी अगर कोई मुझसे कहता है कि यार सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड का नाम बताना, तो अभी तक मेरी जुबान पे चढ़ा नहीं है। अभी थोड़ी नई नई है ना, मतलब ठीक है, देखो जुबान पर नाम आते आते साल दो साल तो लग ही जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर सोनाक्षी सिन्हा ने अचानक से शादी कर ली, हमें ये सब पेनिट्रेट करने का मौका भी नहीं दिया कि हाँ दे आर एक्चुअली हैविंग एंगेजमेंट, उसके बाद ये उसके बाद वो, ऐसा कुछ किया नहीं, तो नाम जुबान पर कैसे आएगा आप ही बताइए भाई साहब। सो हेलो हाई, मैं आज नुप्रमस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अगर सोनाक्षी की बात करें तो इनकी शादी इंटर रिलीजन होने के कारण अपने आप में कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुकी है, लेकिन बड़े सारे पॉजिटिव वीडियोस डालने के साथ साथ कपल गोल्स का एग्जाम्पल ये दोनों सेट करते हुए आए हैं। अभी रिसेंटली जहीर जो इनके हस्बैंड है वो पेपराजी फोटोग्राफर्स के बीच में खड़े थे, हाँ जी, और जिस तरह से पिक्चर्स क्लिक करी जा रही थी तो सोनाक्षी की पिक्चर्स वो खुद अपने हाथों से क्लिक कर रहे थे, तो ये देखकर सोनाक्षी बड़ा शर्मा गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो छा गई ये कहते हुए कि हाय हाय सी द कपल गोल, कितनी अच्छे कपल है ये, देखो कितनी प्यार से रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो अब ये बातें करवाई जा रही हैं या सच में जेन्युइनली निकल कर आ रही हैं ये तो नहीं कह सकते इतनी दूर बैठे बैठे, लेकिन हाँ इतनी दूर बैठे बैठे इंडिया की इनसाइट्स और भी लेकर आई हूँ आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235 8840. Terms and conditions apply.

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
2: यू नो व्हाट, धीरे धीरे से सेलिब्रिटीज एक नया पिक्चर ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी, और उसका हैशटैग है सेल्फी विथ मैंगोज, राइट? और ये हैशटैग ट्रेंड तो आप भी फॉलो कर सकते हैं मेरी जान। सो हेलो, हाय, मैं आज यहाँ पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज कि भाई ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जब आप इंडिया से मैंगोज मंगाओगे ggmartonline.com पर जाकर, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ जी, रत्ना के री के अल्फांसो मैंगो चाहिए या देवगढ़ के अल्फांसो मैंगो चाहिए, जिनके प्राइसिंग 35 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स एंड 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स है, तो भाई क्या बात रहेगी। हाँ, सो आप पहुंचिए ggmartonline.com पर, जहां से आप ये इंपोर्टेड मैंगोज मंगवा सकते हैं। और यही नहीं, A to Z n नंबर ऑफ ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं बैठे बिठाए, राइट? इन सारी बातों के साथ साथ आपको याद दिला दूं कि कई बार मैंगोज जो है वो ऑन ऑर्डर्स अगर आते हैं तो उनके ऊपर फुल केमिकल्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो मैंगोज पाइल अप ना हो, खराब ना हो, लेकिन ऐसा इनके मैंगोज के साथ कुछ नहीं है। आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जा रहा है, राइट? तो पहुंचिए ggmartonline.com, आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning! कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर.
8: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो.
9: You know what, जो असली अवार्ड्स थे ना वो आपको मिल चुके. अरे जब मिलने थे तब मिल चुके, अब आपने तब अचीव नहीं किया तो आप थोड़े लेट हो चुके हैं भाई साहब. सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. एंड वो होता है ना कि स्कूल टाइम में हमारी एक पर्टिकुलर रैंक आ जाती है, एक पर्टिकुलर मार्क्स आ जाते हैं तो हमें ट्रॉफीज मिल जाती है. तो असली मायने में जो मज़ा उन ट्रॉफीज में आता है ना वो आजकल की महंगी महंगी ट्रॉफीज में तो नहीं आता है. एंड अब तो सेलिब्रिटीज को भी नहीं आता है, मतलब धीरे धीरे से अवार्ड फंक्शंस की सच्चाई जो बाहर निकल कर आ रही है. तो ये सच्चाई जानने के बाद तो यार ये जो क्रेज है वो कम होता जा रहा है. सो हेलो हाय, मैं आज अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि हम सब ने मिर्जापुर तो देखा ही है, राइट? उसमें कालीन भैया के जो बेटे थे, आहा दिव्येंदु, राइट, जिनको आपने प्यार का पंचनामा मूवी से भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, राइट? सो प्यार का पंचनामा मूवी में इन्हें बेस्ट डेब्यू का एक अवार्ड मिला था और उसके लिए ये पहुंच भी गए थे. और उसके बाद इन्हें कई बार हर साल में फ़ोन आते हैं कि अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, क्या आप आओगे? तो ये अगर मना कर देते हैं तो तुरंत झट से वो अवार्ड किसी और को दे दिया जाता है. मतलब कोई वैल्यू करता नहीं है कि आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपका अवार्ड आप तक पहुंचा देंगे. लेकिन ये डेजिग्नेशन सिर्फ आपके लिए एक होता है ना, लिहाज लज्जा, वो सब कुछ नहीं, बल्कि वो अवार्ड वो डेजिग्नेशन उठाकर किसी और को दे दी जाती है. तो अब जो दिव्येंदु हैं वो अवार्ड्स पर तो यकीन नहीं करते हैं, डेफिनेटली नॉट. और मुझे लग रहा है कि बाय द टाइम सेलिब्रिटीज अब इन्हें परचेज करना भी नहीं चाहते हैं. आज अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है. डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: हाय, दिस इज सलमान खान, विशिंग यू वेरी हैप्पी ईद मुबारक। जोश में रहो।